0: उम्र के लोगों के लिए एक मैसेज है और यही कामयाबी का मैसेज है। आप अगर विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से देखें, वेस्टर्न कल्चर में विमेन एम्पावरमेंट की बात शुरू हुई वो तो आज से 400 साल पहले, इस्लाम में तो 1400 साल पहले खवातीन को एक आला मकाम पर फायज किया था।
1: रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए उसवा हसना है। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल दरामद वक्त की आम ज़रूरत है। इस्लाम ने खवातीन को खुसूसी मकाम और हुकूक दिए हैं। वालिदैन की तालीम और फरमा बरदारी से मुतालिक अहकाम बहुत वाज़ेह हैं। गैर मुस्लिम मुफक्किरीन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तहरीरें और अशआर लिखे हैं। वज़ीर इत्तला'अत व नशरियात दाऊद तारक का इस्लामाबाद में कौमी रहमत लिल आलमीन व खातम नबिय्यीन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम सेमिनार से खिताब। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज फिर सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला 6 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश। मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, पिशावर, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर और सियालकोट के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सीतापुर, धार के मकामी बरसाती नदी नालों में सुफियानी और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दुबई में

el metal.

风。

ياسين.

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: here.
1: FM 101 Abul Bali Jabu Shaba.

ready for the rhythm that moves you.

Coming up next, 101 News Headlines.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

Righto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, and of course, assalamu alaikum, Ahle Pakistan. Janab se mukhatib, aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. Alright, Janab, kaise aap tamam log? Ikin and teek taak, yamane fit hai. Mazze mein hai, khub enjoy karein apni zindagi ko. It's 8 to 6 on the dial, ladies and gentlemen. Aap se likhti kaafi der tak, yeh mera aapka saath rehne wala hai. So, khub sari masti hai, lots of fun only on FM 101. Well, wo kya hai na, ki subah mujhse utha nahi jata. Ye bada masla ho raha hai. Aajkal ye har koi keh raha hai, lekin I am a very good morning person. Mujhe aisa koi issue nahi hai. Lekin log normally ye kehte hai ki subah subah utha nahi jata. Wo kyun nahi utha jata? Kyunki ab chuke September shuru ho chuka hai. Aur September to aapko pata hai kitna khaas mahina hota hai. Hai na na? So, wo log jo ke bichare garmi mein meri tarah sataye hue the, ab unko raat ko zara sukoon ki neend aati kyunki raatein zara thandi thandi si hone ja rahi hain aur din jo hai wo garmi se bharpoor hote hain, to wo yakeenan raat achhi guzar jati hai. Aur jab subah uthne ka dil nahi kar raha hota, uski wajah ye hoti hai ki sukoon mein hote hain, hum kehte hain yaar so lo jitna so sakte ho so lo, lekin main bichara gareeb itna gareeb ke mujhe subah uth ke aana padta hai apne kaam pe, lekin I'm very happy with this. Because always remember, इसको याद रखना है कि काम से कभी complain नहीं करनी, क्योंकि जब काम नहीं होता ना तो वो बहुत बड़ी complain होती है. तो always शुक्र अदा करें अपने परवरदिगार का कि आपके पास काम है ना. ये एक बहुत ही स्याने बंदे ने कहा था और समझ गए होंगे बहुत सारे लोग कि ये किसने ये बात की थी, लेकिन जिसने भी की थी ना बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक बात की थी. इसे कहते 16 आने सच्ची बात है. वो वाला हिसाब के साथ भारल जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे गुजर रही है आपकी मॉर्निंग? मेरी तरह वो लोग जो कि सुबह सुबह उठते हैं, उठ गए होंगे और डेफिनेटली चाय की प्याली हाथ में होगी, इंतजार करें कि किस तरीके से जाए जाके सिंक के पास जाके मुंह हाथ धोएं. या फिर वैसे सुबह ना मैं हमेशा मेरी जो कोशिश होती हुई थी कि मैं सुबह उठ के नहाता जरूर हूँ. मैं एक्सरसाइज के बाद नहा के फिर मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं बड़ा फ्रेश रहता हूँ. वो अलग बात है कि आगे ऑफिस जाओ तो कोई ना कोई ऐसे प्रेशर प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से डाउन हो जाए बंदा, तो अलग बात है. लेकिन सुबह सवेरे हमेशा थोड़ा सा रनिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज करें, उसके बाद हम नहा के घर से निकलें, तो अब यकीन करें कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे, बड़ा फ्रेश फील करेंगे. और मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए. अगर फ्रेश नहीं है ना मॉर्निंग, तो दिन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता. दूसरी चीज ये कि अगर आप घर से ब्रेकफास्ट किए बगैर निकले ना डूड, तो मत निकलो. मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मत निकलो घर से, क्योंकि सुबह जो है ना वो ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी. लोगों ने ना डाइटिंग के कॉन्सेप्ट को बड़ा गंदा किया हुआ है, खराब किया हुआ है. अगर आपको डाइट करना है, फैट बर्न करना है, तो उसके लिए मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ कि प्लीज डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट. अपने नाश्ते को बिल्कुल स्किप नहीं करो यार. आपको सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, 2 एग वाइट्स खाओ, 6 खा लो एग वाइट्स खाओ. एग वाइट्स आपका वजन नहीं बढ़ाता है, वो आपको एनर्जी देगा सारा दिन. ठीक हो गया, तो आप एग वाइट्स खाएं, साथ 2-3 ब्रांड ब्रेड के पीस ले लीजिए, साथ आप जो है वो जूस ले लें, थोड़ा सा फ्रेश जूस. इन टारगेट डब्बे के जूस पी रहे हैं, शेक बना के पी रहे हैं, नो नेवर. तो ये चीजें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है. बहरहाल जी, प्रोग्राम की पोस्ट के हवाले से आई हैव नो आइडिया कि वो पोस्ट मौजूद है कि नहीं मौजूद सोशल मीडिया पे, लेकिन डेफिनेटली मैंने पोस्ट भेज दी है. और अगर तो पोस्ट लगनी होगी तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा. लेकिन आई थिंक दोनों तरफ से अभी तक पोस्ट को देखा नहीं गया है. सो लेट मी चेक, एक दफा पेज पे जाके देख लेता हूं. अरे वाह, एज यूजुअल हमेशा की तरह पोस्ट नहीं लगी है दोस्तों. सो नो प्रॉब्लम, हम आपको लेके चलेंगे आज के पहले ट्रैक की जाने, उसके बाद लौट के वापस आएंगे. डेफिनेटली फिर आपसे करेंगे खूब सारी गपशप, मॉर्निंग के हवाले से बातें करेंगे. हम सुबह के लोग हैं जी, सुबह सवेरे, सुबह का पंछी क्या होता है वो, जो कुछ ऐसे लफ्ज होता है ना, मुझे नहीं मालूम इतनी सारी चीजें, लेकिन ये कि बस हम वो वाले लोग हैं जो सुबह सुबह उठ जाते हैं और बहुत से लोग जो उनको इंटरटेन करते हैं, बहुत से लोगों का दिमाग खराब कर रहे होते हैं हम. एक मैसेज मुझे आया था कि सुबह सुबह साहिल भाई आप जब ये बातें करते हैं ना कि उठ जाओ, अच्छा है ये, वो सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जहां आप कहते हैं ना ऑफिस जाना है, वहां हम एकदम परेशान हो जाते हैं. यार क्यों बंदा याद दिला रहा है कि ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस तो जाना है ना डूड, कमाने नहीं है आपको. So here we go, ladies and gentlemen. पहला ट्रैक ऐसा शामिल करूंगा जिससे आपकी मॉर्निंग को एकदम मैं और फ्रेश करने वाला हूँ, शोर करने वाला हूँ और आपके दिमाग की घंटी बजाने वाला हूँ. The track is Let's Get Loud by Jennifer Lopez, ladies and gentlemen. Here we go. It's 8:11 on the dial.

0: इस्तेमाल लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आवाम के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को को हिदायत की है कि मंजूर शुदा कोटे के मुताबिक सूबों को फौरी तौर पर गंदुम फराहम की जाए। कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के कौमी इदारे ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का इंतबाह जारी किया है। 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों के नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज कराची में स्टार्स और चैलेंजर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: I love FM 101. Suror Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सुनते रहिए FM 101.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अब नहीं यहाँ सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में मैं ना सही ना मैं गलत मेरा नाम है

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और OIC के सेक्रेटरी जनरल ने उम्मत मुस्लिमा के लिए तंजीम के किरदार को मजबूत बनाने के गर्ज से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। बहरी असलाहत के बारे में वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स के तहत पाकिस्तान के बंदरगाहों के निज़ाम में जदीद असलाहत और डिजिटलाइजेशन के एक नए दौर का आगाज हो गया है। दफ्तर खारजा ने नारोवाल में हिंदू मंदिर के हवाले से भारतीय वजारत खारजा के बेबुनियाद और सियासी मकासद पर मबनी दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। और खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल दुबई में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
3: This is FM 101.
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: I love FM 101.

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दिस इज FM 101।
2: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101. This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Aaiye saamein, ab samaat farmaye program Rahe Khuda. Mukarrar hain Sahabzada Dr. Sayyid Shehzad Hussain. Ye program rozana 3:05 par नशर किया जाता है।
5: आज हम बयान करेंगे, पारा है 18 और सूरत अल मोमिनून आयत मुबारक है 23 से 30 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तकून। सदकुल्लाह। वलकद, और यकीन बेशक अरसलना हमने भेजा नूहन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमी उसकी कौम की तरफ। फ़काला, बस उसने कहा या कौम इबुदुल्लाह ए मेरी कौम अल्लाह को पूजो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, इसके सिवा कोई खुदा नहीं तुम्हारा। अफला तत्तकून, क्यों तुम डरते नहीं। फ़काल अलमलाउल्लज़ीना कफरु, तो उसकी कौम के जिन सरदारों ने कुफर किया वो बोले मा हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, ये तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी। मिसलु युरीदु, चाहता है ये अय तफद्दला अलैकुम, के तुम्हें गुमराह करे, तुम्हारा बुरा काम तुम्हारा करे। अलैकुम, तुम्हारे बोलो शाअल्लाह, और अल्लाह चाहता ला अंजला मलाइकातुन, तो फरिश्ते उतारता। मा समैना बेहाजा फी अबाइन अलवालीन, हमने तो ये अगले बाप दाऊदों में ना सुना। इन हुआ इल्ला रजुल बिही जिन्नतुम फतरबसु बिही हत्ता हीन, वो तो नहीं मगर एक दीवाना मर्द, तो कुछ जमाना तक इसका इंतजार किए रहो। ये जो फी अबायन अल अव्वालीन है, फी मैंने में अबायन अल यानी बाप दादाओं, अव्वालीन में हमने ना समेना मा समेना, हमने बाप दादाओं में नहीं सुना कि बशर भी रसूल होता है। ये उनके कमाल हमाकत थी कि बशर का रसूल होना तस्लीम नहीं किया, पत्थरों को खुदा माना उन्होंने। तो इसलिए इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्नत, ये तो एक मर्द है जमाना तक हमारी तरह। हता इन, तो इस तरह से मैं ताकि इनका जुनून दूर हो, ऐसा हुआ तो खैर, वरना इसको कत्ल कर डालना। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के ईमान लाने से मायूस हो गए, तो फिर उन्होंने और उम्मीद ना रही कि अब हदायत नहीं मिलेगी, तो फिर उन्होंने कहा रब्बे रब्बिन सुरनी बेमा कज़्ज़बून। फिर उन्होंने अर्ज की उसकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में नूह ने अर्ज की ऐ मेरे रब, सुरनी मेरी मदद फरमा, बेमा कज़्ज़बून इन्होंने मुझे झुटलाया। फौहैना, बस हमने वही भेजी अलैह उसकी तरफ अनिसनाए के हमारी निगाह के सामने फुलका बेआयुनना व वहयना फैजा जा अमरुना वफारत तनूर, और हमारे हुक्म से कश्ती बना, फिर जब हमारा हुक्म आए और तनूर उबले तो उसमें बिठा ले हर जोड़े को में से दो, तो वह अहला का इल्ला मन सबक अलैहिल कौलु मिनहुम, ये उनमें से जो जिन पर बात पहले पड़ चुकी। वला तो खातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमु इन्नहुम मुग़रकून, और इन ज़ालिमों के मामले में मुझसे बात ना करना, इन्नहुम मुग़रकून ये जरूर डुबोए जाएंगे। ठीक है, फैजस्तवहता अंत वमन माकाल फुल के फकुल अलहमदिल्लादी नजाना मिनल कौम ज़ालमीन, तू और तेरे साथ वाले तो कह सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने हमें इन ज़ालमों से निजात दी। वकुल रबी अनजिलनी मुंजलन मुबारक मानता खैरमजिलीन, और अर्ज कर ए मेरे रब मुझे बरकत वाली जगह उतार, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। इन्ना फ़िज़ालिकल आयातिन वन्ना कुन्ना लमुबतलीन, बेशक इसमें ज़रूर निशानियाँ हैं और बेशक ज़रूर हम जांचने वाले थे। यानी कि उस कौम के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भेज कर इनको बाद नसीहत की, और फिर वो

जी हाँ, आप सब सलामती हो, आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आपके अपने होस्ट, अपने दोस्त आरजे अली रजा की। चार सितंबर 2026 जुमे की ये खूबसूरती शाम है, 5:05 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम फन ऑन 101 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। एक लंबे बिछड़न के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे बहुत सारा याद किया होगा आपने, कल मैंने तो बहुत सारा याद किया। वल हम मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, और फाइनली हम मिल जाते हैं। कैसे मिजाज हैं, क्या हालात हैं, सब ठीक ठाक हैं? लाहौर का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आज जो बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और मौसम काफ़ी बदल गया। जो एक गर्मी का खुमार था, जो हब्स थी ना, वो ख़त्म हो गई और एक अच्छा खुशगवार मौसम लाहौर का हो गया, और वीकेंड सीन भी ऑन हो चुका है। जी हाँ, जुमे की शाम को हम आते हैं, वीकेंड का आगाज़ करते हैं और हफ्ता इतवार और जुमे की शाम खूब इंजॉय करते हैं। फिर पीर वाले दिन आता है, और पीर को क्या होता है आपको पता है ना, पीर को हम वापस लौट जाते हैं, अपने अपने कामों को वापस चले जाते हैं। वेल, ये तो ज़िंदगी का सिलसिला है, ये तो इंसान की ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में ऐसे ही एक रूटीन, एक तसलसल चलता रहता है। वेल, आप मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी का तसलसल कैसा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, और आप इस वीकेंड पे क्या करने जा रहे हैं, क्या नया करने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या नया हुआ है, ज़रूर मुझे बताइएगा। FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर सुन रहे हैं, और मुझे कहते हैं जी आरजे अली रजा, बड़े प्यार और बड़े मान से कहते हैं। मेरे तमाम सोने सोने से लिसनर्स वापस आ जाएं, और पोस्ट अपलोड हो चुकी है facebook.com/FM101 लाहौर का पेज हाजिर खिदमत है जनाब। हमारी पोस्ट अपलोड हो चुकी है, प्यारी सी पोस्ट है, उसको अपलोड कर दिया गया है, थैंक यू सो मच। और आइए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए, बल्कि आपके कमेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक भी लेके आते हैं, उस पर भी बातें करते हैं, और जानते हैं कि आप उस टॉपिक के बारे में, हम ना बेसिकली एक सवाल बस छेड़ देते हैं, और उस सवाल के बहुत सारे हमें पहलू और बहुत सारे हमें जवाब मिलते जाते हैं। तो आज भी एक सवाल हम छेड़ेंगे, आज भी आपसे एक सवाल हम करेंगे, और उस सवाल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम आपसे करेंगे। और आपने करना क्या है, 101 को सुनते रहना, मेरे साथ साथ रहना है। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101 एल लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम अपना पैगाम लिखिएगा, भेज दीजिएगा 4471 पर। और आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/FM101 लाहौर का पेज, और 04-2111-0101 कॉल भी कर सकते हैं। 6 बजे लेंगे, हाँ 6 बजे लेंगे हम लाइव कॉल्स, और उससे पहले ऑफ एयर कॉल्स भी ले लेंगे यार। काफ़ी अरसे के बाद आप कहीं जाएं ना, तो बहुत कुछ नया नया लगता है, और FM की और हमारे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग की जो खुशबू है, वो खुशबू हमेशा से ही मुझे अपनी तरफ खींचती चली आई है। और जब भी मैं स्टूडियो में आता हूँ, हर जुमे को, या वैसे भी किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे मैं आऊँ, तो जो यहाँ की ये खुशबू है ना, वो उस खुशबू में बहुत अपनाइत है, उस खुशबू को सूंघने का दिल करता है, और दिल करता है कि इस खुशबू को सूंघा जाए, इसको अपने अंदर संभाल लिया जाए।

आरिफ लोहार की आवाज सुनिएगा। चनु मौज करावा, तनु सैल करावा। साथ साथ है ना ये है FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। आयो फेसबुक ते आजो।

0: ओके जी लिसनर्स, प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं 101.8 पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज़ है आरजे अरियाज़ा की और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और 5:13 हुए हैं। आप मेरे साथ साथ मौजूद हैं, आपके नाम भी शामिल करेंगे और देखेंगे किस किस ने अपनी प्रेजेंट लगवा ली है, कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। आज ये जो टॉपिक है ना, मैं काफ़ी देर सोचता रहा यार आज क्या बात करें। काफ़ी दिनों बाद मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद अपने लिसनर्स को मिल रहा हूँ, क्या खास बात की जाए आज। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे काम हमें बहुत आसान लग रहे होते हैं और बहुत सारे काम हमें आसान लगते हुए भी मुश्किल लग रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम वो काम करना नहीं चाहते, या हम बड़े सुस्त हो चुके हैं, या हम कल करूँगा इस फार्मूले पर यकीन रख रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में रूटीन में बहुत सारे हम काम दिन में कर रहे होते हैं और वो काम हमें मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन वो काम हम कर भी रहे होते हैं। कुछ लोग मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की ड्यूटी होती है यार वो काम करना। जैसे कुछ लोग सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं तो वो कहते हैं यार ठीक है मुझे सिक्योरिटी की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये ड्यूटी। या कोई फार्मेसी का काम करता है वो कहता है यार मुझे ये काम नहीं पसंद लेकिन मैं कर रहा हूँ। या आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कहते हैं यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ, अब्बा ने कहा था। तो ऐसे जिंदगी में हमारे बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम करना चाह रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, हमें मुश्किल भी लग रहे होते हैं, फिर भी हम कर रहे होते हैं। जैसे कि सुबह उठना, अलार्म लगा के सोते हैं और जब अलार्म बजता है तो बड़ा मुश्किल लगता है यार उठना, लेकिन फिर भी हम उठ जाते हैं। अलार्म को हम 4-5 थपकियां मारते हैं, 5 मिनट वो स्नूज पे जाता है, जब वो 5 मिनट बाद दोबारा बोलता है फिर हम उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे आधा पौना घंटा घंटा गुजर जाता है, लेकिन हम उठते हैं, अपने सारे काम करते हैं। वो काम हमें मुश्किल लग रहा होता है यार, उठना बहुत मुश्किल है सुबह सुबह उठना, अरे भाई मैं सुबह सुबह नहीं आ सकता। तो आज का हमारा सवाल है कि कोई ऐसा काम जिसको करना आपको हमेशा मुश्किल लगता है, तो कौन सा काम है जिसको आप करते भी हैं, करना भी चाहते हैं, कर भी रहे होते हैं, लेकिन आपको वो मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, अक्सर काम मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसान सा टास्क होता है, लेकिन हम अपने जहन पे उसको सवार करके मुश्किल बना देते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये काम कैसे होगा, मैं कैसे फलां बंदे से बात कर पाऊंगा, कैसे उसके सामने अपने मुतालबात रख पाऊंगा। लेकिन बज़ाहिर वो काम आसान लग रहा होता है, जो अगला बंदा होता है उसने खा थोड़ी जाना होता है, वो बंदा आपका हो सकता है वेट कर रहा होगा यार ये बंदा मेरे पास आए रिक्वेस्ट लेके मुझसे बात करे, कम अज़ कम मुझे बताए तो सही अपना मसला अपनी परेशानी। लेकिन हम सोच रहे होते हैं यार नहीं नहीं भाई उसके पास नहीं जाना, वो आगे से क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। एक तो हम ये बड़ा सोचते हैं यार वो क्या सोचेगा, अरे यार हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं यार। तो जनाब कोई ऐसा काम जिसको करना आपको हमेशा मुश्किल लगता है आप मुझे बता सकते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101 लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, अपना पैगाम लिखेगा, पैगाम में आपने ये लिखना है कि हमें जवाब देना है, हमें इस बात का जवाब चाहिए,
1: मुझे जवाब चाहिए, चाहिए मुझे जवाब।
0: कोई ऐसा काम जिसको करना आपको हमेशा मुश्किल लगता है, इसका मुझे जवाब चाहिए कि वो कौन सा काम है जो आपको करना हमेशा मुश्किल लगता है, आप कर भी रहे होते हैं। अपने मैसेज को भेज देना 4471 पर 04221 3001। आपकी ऑफर कॉल्स को भी लेते हैं, लाइव कॉल्स को भी 6 बजे शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें भी करनी है। बहुत सारी मुझे आपकी यादें भी आई और बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए कि सर आप कहाँ हैं, आ क्यों नहीं रहे, किधर चले गए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम चले ही गए थे और वापिस आ चुके हैं।

फेसबुक पे हमें मैसेजेस मिल रहे हैं और फेसबुक पे हमें देखते हैं किस किसने ज्वाइन कर लिया। facebook.com/fm101 लाहौर का खूबसूरत सा प्यारा सा पेज है। आय हाय हाय हाय, पेज को कहाँ छोड़ के गया था, कहाँ पहुँच गया, इतनी तरक्की, वाह वाह क्या बात है यार, ज़बरदस्त, बहुत आला बहुत आला। अच्छा जी जनाब, हमें मैसेज किसने भेजा है, हमें मैसेज भेजा है जी, यस दिस वन मद्दी महमूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम जनाब, दिल भेजा है इन्होंने, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके दिल का, आपका दिल सलामत रहे, आप सलामत रहें जनाब। मोहम्मद हफीज़ुर रहमान भक्कर हैं, भक्कर से हैं जी, इन्होंने अपना नाम ही मोहम्मद हफीज़ुर रहमान भक्कर रखा हुआ है, थैंक यू सो मच। हम ईदगाह जनूबी भक्कर से सुनते हैं, बड़े हमारे पुराने लिसनर हैं, मुझे याद आ रहा है वो पुराना ज़माना मुझे याद आ रहा है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया हफीज़ुर रहमान साहब। इनके दोस्त हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान और मुल्तान से गुल यासिन नाज भी सुन रहे हैं, मुझे कहते हैं जी वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच जी, आपको वेलकम करते हैं जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रिहाना खान है जी, वो भी भक्कर से हमें सुन रही है, कि बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़ुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, मेरे इल्म में आपने इजाफा कर दिया और बड़ी अच्छी बात आपने की रिहाना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।

चलें जी, ये गाना मैं चलाता होता हूँ अक्सर, और गाना सुनिएगा अब्दुल्ला सिद्दीकी की आवाज़, क्या बात है जी अब्दुल्ला की, और इनका साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं आतिफ असलम। इस गाने को एंजॉय करेंगे मैं और आप साथ साथ, और एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर का स्टूडियो है, मैं हूं आरजे अली रजा और प्रोग्राम है जी फन ऑन 101। हम करने आए बहुत सारा फन, आप मेरे साथ साथ हैं, आइए आ जाइए फिर मैदान में, इस गाने को करिए एंजॉय।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: اسمائل اینڈ ڈائل 111 111 FM۔

ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101.8 पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज है आरजे अली रजा की और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101 हर जुमे की शाम 5 से। ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101।

सो मच उस्मान, आपने कॉल की। और उस्मान कहते हैं जी मैं नात हूँ और महफिल में जब मुझे कह दिया जाता है ना कि साउंड भी आपने लेके आना है, सारे अरेंजमेंट्स भी आपने करने हैं, तो ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर लेता हूँ और अच्छे तरीके से करता हूँ। उस्मान, हर बंदा किसी न किसी काम में एक्सपर्ट होता है, कोई इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होता है, कोई प्रेजेंटेशन बनाने में एक्सपर्ट होता है, कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है, तो फिर जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, फिर उसके ज़िम्मे वो काम डाला जाता है। ठीक है यार, ये काम आपके ज़िम्मे, ये काम आपने करना, आप इसमें एक्सपर्ट हो।

0: अक्सर ऐसे होता है कि हमें मिलने वाला वो काम थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन हम उसे भाग रहे होते हैं। हम पहले कहते हैं यार ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं पीछे छुड़ा रहे होते हैं, या हम बड़े सुस्त हो जाते हैं, या हमें जो नतीजे हैं उनका खौफ होता है कि यार इस काम से क्या नतीजा निकलेगा, को मैं मुझे कोई फेलियर ना हो जाए, कोई मुश्किल ना पेश आ जाए, या हम मोटिवेट नहीं होते। हमें काम देने वाला, हमें काम बताने वाला, या वो काम जो हम कर रहे हैं उसके हवाले से हमें वो मोटिवेशन उस तरह से नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं कि दूसरों को बड़े आसान लग रहे होते हैं कि यार ये तो कोई काम ही नहीं है यार, ये तो कोई काम ही नहीं था यार, लेकिन वो जो बंदा वो काम करता है ना उसके लिए वो काम मुश्किल होता है और वो काम वाकई टाइम टेकिंग होता है। अक्सर हम अपने ऑफिसेज में भी देखते हैं कि यार बॉस कहते हैं यार ये भी कोई काम है, ये 5 मिनट का, हार्डली 5 से 10 मिनट का काम है यार, ये करके ले आओ फटाफट। लेकिन उस काम में बहुत सारी मेहनत दरकार होती है, बहुत सारे काम दरकार होते हैं, बहुत सारे चीज़ें दरकार होती हैं, और वो काम बहुत सारे हाथों से होकर फाइनलाइज होना होता है। तो इस चीज़ को भी हमें मैनेज करना आना चाहिए कि यार अगर बॉस कह रहा है कि ये काम फौरन करके ले आओ, ये तो 5 मिनट का काम है, तुमने आधा घंटा लगा दिया, तो बॉस को भी बताया जाए, थोड़ा सा समझाया जाए, थोड़ा सा कहा जाए सर ये ऐसे होता है काम। बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हम उन्हें शुरू तो कर लेते हैं लेकिन मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है, और बाज लोगों के लिए किसी काम को शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप घर बना रहे हैं तो आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि यार मैंने घर कैसे बनाना है, और आप ज़ीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस घर को बनाने के लिए आपके पास जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने उस घर पे लगाना है, वो आपके पास उसका होना बड़ा ज़रूरी है। फिर उस घर का होना बड़ा ज़रूरी है, और घर है तो उस घर में क्या नक्शा बनना है उस नक्शे का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ जब हम सोचते हैं ना, फिर यार मटीरियल आना है, फिर मैंने कोई ठेकेदार देखना है, फिर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, फिर सामान यहाँ से लाना है, ये सारी चीज़ें हमें जब हम सोच रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो ये काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हम कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम है यार, कार बनाना बड़ा औखा काम है, वाकई मुश्किल है। लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए ये बड़ा आसान होता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बनाता है, उसको आप कहें कि जी घर बनाना है, तो ये उसके लिए बड़ा आसान होगा, ठीक है यार ये घर बनाना है, यहाँ से ये सामान ले आओ, ये लेबर इधर लगेगी, ये काम ऐसे होगा, यहाँ से काम ऐसे काम स्टार्ट करना है, यहाँ पे ये करना, वो सारी चीज़ें उसको पता होंगी, तो वो कहेगा कि यार ये काम बड़ा आसान है। लेकिन जो बंदा इससे फेमिलियर नहीं होगा, जिसको इन कामों का पता नहीं होगा, तो वो तो सोचेगा कि यार ये बड़ा ही कोई औखा काम है। हमें मुदस्सिर सुन रहे हैं, अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद, थैंक यू सो मच मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। हमें मियां हसनैन सुन रहे हैं, अली भाई मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू सो मच। हमें जाजिब सुन रहे हैं जी लाहौर से, थैंक यू सो मच जाजिब, बहुत शुक्रिया। एक कमर्शियल ब्रेक है जी हमारे पास, उसकी जानी बढ़ते हैं, और उसके बाद हमने एक गाना चलाना है, वो उस गाने को भी इंजॉय कीजिएगा। कमर्शियल ब्रेक के बाद और गाने के बाद हम लौट कर वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा।

कांग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज है आरजे अली रजा की और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम फन। 5:37 हो गए हैं और ये साथ रहने वाला है ठीक 7 बजे तक। मैं के सोनियो की हाल चाल है, ठीक ठाक हो, होशबाश हो, हंस दे मुस्कुरा दे हो कितने रहते हो। वेल, आज हम बात करें क्योंकि ऐसा काम जिसको करना आपको हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन के हवाले से, कि जब भी हम कहीं जाते हैं पहला इम्प्रेशन कितना ज़रूरी होता है। किसी भी इंसान से, किसी भी शख्स से पहली मुलाकात में हमारे जहन में उसके बारे में बहुत सारी बातें आ जाती हैं और इब्तदाई राय जो है वो बन जाती है, और जो इब्तदाई राय बनती है उसको हम फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं, यानी कि पहला तासुर कहते हैं। ये तासुर अमूमन हम उस इंसान के लिबास, उसकी गुफ्तगू के अंदाज़, उसके चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज़ और उसके रवैये से इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और जो पहली मुलाकात होती है ना, उसमें इंसान चंद ही लम्हों में, चंद ही बातों के बाद, चंद ही लम्हों की गुफ्तगू के बाद किसी भी दूसरे इंसान के बारे में एक राय कायम कर लेता है और उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो राय हाँ वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन एक राय कायम हो जाती है कि यार ये इंसान ऐसा है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन में हमें पता चलता है। जैसे कि हम किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको भी हमारी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा आइडिया हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज से आइडिया हो कि हम कितने कॉन्फिडेंट और कितने पुरएतमाद हैं। और अगर आप मस्बत तासुर कायम करना चाहते हैं तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए और शाइस्ता गुफ्तगु होनी चाहिए, मुनासिब लिबास आपने पहना ज़ेब-ए-तन किया होना चाहिए और पुरएतमाद नज़र आने चाहिए। आप में एतमाद जो है वो अच्छा एतमाद भी जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंट ही होना चाहिए आपको किसी भी चीज़ पर। कोई भी चीज़ आपने पहनी है उस पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हों, एवं अपनी चीज़ों के पैसे ना गिनाने शुरू हो जाएँ, कीमत ना बतानी शुरू हो जाएँ, या वो जगह ना बतानी शुरू है जहाँ से आपने वो चीज़ ली है। कहते हैं ना, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को सबमिसिव रखें, म्याना रवि के साथ चलें। और ये भी बात है कि पहली मुलाकात से आप किसी इंसान के किरदार का, किसी इंसान की शख्सियत का ख़त्मी फ़ैसला नहीं कर पाते, और हो सकता है कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन में कुछ और हो और बाद में कुछ और हो। अक्सर ऐसे होते हैं ना कि हमें फर्स्ट इम्प्रेशन में एक बंदा मिला, फर्स्ट पहली मुलाकात है आपकी उससे, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा है वो बड़ा बहुत ही अजीब सा पड़ा है। आप कहते हैं यार ये बड़ा एरोगेंट सा बंदा है, ये मगरूर बंदा है यार, इसने तो मुझे सही तरह से सलाम भी नहीं किया। हो सकता है उस टाइम उसका ध्यान कहीं और हो, उसकी तवज्जो कहीं और हो, वो कहीं और गया हो, या उसने इतना फोकस नहीं किया हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ना हो। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि वो पहली मुलाकात में उनका जो कह लें कि योनरा होता है वो और होता है, और जब थोड़े दिन बाद हम उनसे मिलते हैं तो वो हमें और ही शख्सियत लग रहे होते हैं। हम कहते हैं यार आप वो नहीं हैं, यार आप वो नहीं हैं, आप हो ही सकते वो। ऐसा अक्सर दोस्तों से लड़ाई के बाद भी होता है, यार तू बड़ा लाड़े से होते, तू तो हैगा ही नहीं, तू तो मेरा यार ही नहीं, तू तो मेरा दोस्त ही नहीं। हमें शमीमा पी ने कॉल की, थैंक यू सो मच शमीमा पी कॉल करने के लिए, और मैंने शमीमा पी के साथ छोटा सा मजाक किया, मैंने कहा मेरा आज पहला शो है और वो मान भी गई। देखो यार मुझे इतने अरसे से वो सुन रही हैं और वो मान भी गई, कहती हैं हाँ अच्छा अच्छा आपका पहला शो है, ठीक है ठीक है। मैंने कहा आपको पता है कि मुझे पता चला है कि मेरे से पहले भी कोई अली रजा नाम का आरजे एफएम 101 पे शो किया करता था। वो कहती हैं नहीं मुझे तो याद नहीं है।
नेबिस थी। एनीवेज थैंक यू सो मच, अभी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।

0: There's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

ऑब्वियसली लिसनर्स प्रोग्राम एक दफा फिर से वापस आ चुके हैं। मुझे आरजे अली रजा कहते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं फेसबुक पर, आइए फेसबुक के मैसेज को फ्रेश करते हैं और उसको उनको ऑन एयर करते हैं। देखते हैं किस किस ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/fm101 लाहौर का पेज, पोस्ट अपलोडेड है। और किस किस ने ज्वाइन किया है, किसी ने भी नहीं ज्वाइन नहीं किया। गुलाब हैं जी, कह रहे हैं जी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमें हसनैन सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सुलेमान चांडिया ब्लॉज सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। और हमें मोहम्मद हफीज़ सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुजम्मिल सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपके बहुत शुक्रिया। और हमें ऑफ़र कॉल की थी जी फरी ने चुबुरजी से। फरी कहती हैं कि आपको जुर्माना होगा, आप इतने अरसे बाद आए हैं। तो मैंने कहा जी कर दें जुर्माना। जुर्माना तो फरी ने फिर कोई ख़ास नहीं किया मुझे, लेकिन फरी कहती है कि मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है खाना पकाना। मैंने कहा खाने तो आप, खानों के हवाले से तो आप मशहूर हैं एफएम पे कि आप खाने बड़े बनाती हैं और भेजती भी हैं अक्सर। तो कहती जब वो बनाना हो तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब पक जाए खा खू लें फिर नहीं मुश्किल लगता, फिर बंदा कहता है ठीक है अब तो बन गया। तो ये इनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं फरी जी हम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमें अमारा बेग ने कॉल की, थैंक यू सो मच। अमारा बेग कह रही थी शुक्र है आप वापस आ गए हैं, तो देख लें फिर हम वापस आ ही गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अमारा आपका, आपके मैसेजेस हमें सोशल मीडिया पे भी मिलते रहते थे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रिजवान सुन रहे हैं जी, अली भाई मैं आपका शो सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच जी, करते रहें जी, एंजॉय करते रहें। सामिया सुन रही हैं, भाई मैं पहली दफ़ा आपको सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। रमज़ान गुजर आ चुके हैं, शुक्र है आप भी आ गए, देख लें फिर हम आ गए। मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, बहुत उम्दा प्रोग्राम मोहतरम जनाब मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी की तरफ से आपको और आपकी टीम को और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सुपरस्टार अली रजा साहब आप किस जहान में रहते हैं। ना तेरा जहां कोई और है, ना मेरा जहां कोई और है, हम भी इसी जहां में रहते हैं जी। रमजान गुजर साहब आप कहां रहते हैं, मुझे ये थोड़ा सा बताएं ना, आप किधर होते हैं, आप कहां बिजी होते हैं, आपने हमारा हाल तक नहीं पूछा। ऐसे करता है कोई, कोई अपना ऐसे करता है। जफर मिर्जा है जी दमाम सऊदीया से, वाह वाह गर्म इलाका है यार दमाम, बड़ा रेतला और गर्म इलाका है सऊदीया का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आप हमें सुन रहे हैं और आपने मैसेज भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें शाजिया सुन रही हैं जी, थैंक यू सो मच शाजिया, आपका भी शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं जी मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और शहर लाहौर जिंदाबाद भी कह रहे हैं जी, क्या बात है क्या बात है, शहर सियालकोट भी कह रहे हैं, क्या कहने जी क्या कहने आपके। आज का जो हमने सवाल पूछा है वो उस पर भी कुछ कह देना आप वसीम साहब, आप उसके हवाले से चुप चुप हैं कि कोई ऐसा काम जिसको करना आपको हमेशा मुश्किल लगता है, वो काम आप कर भी रहे होते हैं, करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन वो काम आपको मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा कुछ लोग को ना मल्टीटास्किंग का बड़ा शौक होता है और बड़ी अच्छी बात है, मल्टीटास्कर होना चाहिए ज़िंदगी में, दो दो तीन तीन चार चार काम करने चाहिए आपको और आने चाहिए ये काम आपको, आपको आपके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाता रहे। लेकिन जब अक्सर हम मल्टीटास्किंग जब कर रहे होते हैं ना, इस चक्कर में हमें जो है ना अपने काम मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं कि हमने बहुत सारे कामों में अपना वो कहते हैं ना टांग फंसा ली होती है, बहुत सारे कामों में हमने अपना जहन लड़ा लिया होता है, फिर हम परेशान होते हैं अक्सर, यार फलां काम नहीं होया, मैं की करा, मैं कितने जावा।

अच्छा आपको बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे लोग भी कि इनको कोई काम मिले ना, तो वो मुश्किल भी काम हो ना, हमारी कोशिश होती है कि यार ये काम करना खुद ही है, किसी से हेल्प नहीं लेनी, किसी से मदद नहीं लेनी, ठीक है यार मुश्किल है कोई बात नहीं, खुद ही करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई मंजिल निकालते हैं, इस काम को पाया तक मील तक पहुँचाते हैं, लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेते, वो काम खुद करते हैं। और जब वो काम आप ए से लेके जी तक खुद करते हैं ना, यकीन करें वो काम आपसे बेहतर कोई नहीं भी कर सकता, वो काम आइंदा भी आप ही करेंगे, वो टास्क आइंदा भी आपको ही मिलेगा, क्या आपको उसका सब कुछ पता होता है। जैसे एक बंदा गाड़ी बनाता है ना, उसको उस गाड़ी का सब कुछ पता है, कौन से पार्ट्स लगे, कहां कहां से आए, कहां कहां लगे, क्या हुआ, उसको उस गाड़ी का सब कुछ, सारी वो कहते हैं ना हाउ नो, सारी होती है उसको। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई भी काम मिलता है वो मदद के बगैर कर ही नहीं पाते, वो कहते हैं यार मैं उससे पूछता हूँ, मैं अपने बड़े भाई से अभी पूछता हूँ, अभी कॉल करता हूँ, बड़े भाई ने उत्थे गए ना, मैं हुने कॉल करके पूछना मैं काम किवें करना किसी से मिलना हो, कोई घर मिलने आ जाए, उसको मिलते नहीं है, कहते हैं यार ओ मेरे मेरे बड़े भाई बाहर गए ने आंदे ने तो फिर तुहानू मिलदे ने, या मेरे वाले सब बाहर गए हुए हैं वो आके अभी आपको मिलेंगे, आने वाले हैं बस। कहते यार भाई तुसी साड़ी गल तो सुन लो, नहीं नहीं वही गल करनगे जी, वही गल करनगे, मैनू नहीं कुछ पता। फैजान सुन रहे हैं भाई, मैं आपको सुन रहा हूँ और हंस रहा हूँ खैर ए क्यों हंस रहे हो जी, क्यों हंस रहे हो, सानू भी हंसाओ, सानू भी दसो असी कि ऐसी हासे वाली गल की है जरा तुसी हंस रहे हो। अच्छा जी, और हमें फ़ाइज़ा भी सुन रही हैं, थैंक यू सो मच, हमें फ़ातिमा भी सुन रही हैं जी, फ़ातिमा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए और मैसेज करने के लिए। भाई मैं आपको सुन रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अरसे के बाद आपको सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कौन हंस रहा है, ये कौन है जो हंस रहा है हम पे अच्छा जी, रियाज भट्टी आ चुके हैं, वेलकम करेंगे आपको, कोई नई चीज़ लेके आए आप ये। अच्छा माइक बना हुआ है और लिखा हुआ है ज़बरदस्त, मैंने कहा शायद इन्होंने कोई अपना नाम चेंज कर लिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद कह रहे हैं जी मुझे, रमज़ान गुजर साहब कहते हैं जी खुश आमदीद, कहते हैं मोस्ट वेलकम करते हैं, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद सुन के, थैंक यू सो मच जी गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रियाज भट्टी वंस अगेन जी बहुत सारे मैसेजेस के साथ, थैंक यू सो मच, अदाब अर्ज कर रहे हैं जी गुजर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं गाना चलाना चाह रहा था, हाँ यस यस, ये गाना चलाना चाह रहा था मैं, तो चला देते हैं फिर ये गाना आप सबकी खूबसूरत सुनातों की नज़र। अब्रुल्लाह का गाना है, पुराना गाना है, बस दिल की है इस गाने को, शर्मा के आए आए, क्या क्या बात,

ये गाना तमाम कुड़ियों के नाम. This song is for all girls right out there. Stick around, stay here. मिलते हैं आपको न्यूज ब्रेक के बाद. कितने नहीं जाना, इतने रहना जे. कॉलिंग शुरू होने वाली है. सुनते जाएं.

0: से महके
1: मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर

0: फिर मिलेंगे। वाह वाह क्या गाना था यार, मजा आ गया इस गाने को सुन के। थोड़ा सा स्लो था लेकिन वो यंगस्टर ने कमाल गई है यार। राइट भाई जी, हमें सुन रहे हैं बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ साथ मौजूद हैं। एफएम वन रेडियो पाकिस्तान लाहौर का खूबसूरत सा ये स्टूडियो है और मुझे आरजे अली रजा कहते हैं। आप सुन रहे प्रोग्राम फन ऑन 101। 6:20 हो गए हैं यार, वक्त कितनी जल्दी भागता है, वैसे कितनी जल्दी वक्त भागता है। और आपकी कॉल्स मुझे आ रही हैं 04211100101। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान। सभी भाई आपको वेलकम, खुश आमदी जी आयनु, अहलन वसहलन मरहबा वली करियानु ते बखैर अगले। कैसे हैं आप?
0: थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारा आप कैसी हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आपको वेलकम कहती हूँ मैं, शुक्र है आप आ गए।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारा।
1: हाँ जी,
0: कैसा लग रहा प्रोग्राम?
1: बहुत अच्छा, और दो माह बाद आपको सुन के और भी अच्छा लग
0: रहा। दो माह बाद वैसे कितना लंबा हो जाता है ना एक कोई भी सफर।
1: आपके टॉपिक के हवाले से ये कहूंगी कि एक इंतजार जी जी करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, और एक इंसान के फेस से नकाब उतर जाए ना, उसको दोबारा अपनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है,
1: बहुत रोखा लगता है। ये दोनों काम मुझसे बड़े मुश्किल है, और जो इंतजार है ना वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, जो दूसरा काम है ना वो मैं करती हूँ दोबारा।
0: अच्छा सही, तो आपके सामने कभी किसी का के चेहरे का नकाब उतरा है आपके सामने, ऐसा हुआ है कभी?
1: बहुत लोगों का उतरा है। अच्छा, का उतरा है।
0: और फिर उन्होंने कोशिश की हो?
1: बहुत कोशिश किया लेकिन आगे से मैं घास नहीं डालती ऐसे लोगों।
0: सही सही सही सही, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक।
1: और दूसरी बात, बहुत अच्छा शो, चाचू हनीफ सुन रहे हैं, अगर चाचू जीरा सुन रहे हैं, फूफो परवीन फूफो सुन रही हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम
0: वालेकुम सलाम
1: और मीम आपकी को, और जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज़ जा रही है बहुत सारी बेस्ट विशेज और दुआएं आप सबके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: दूसरी बात ये कि कोई सा भी अच्छा सा गाना अपने नाम जैनबा पी और रेहा पी के नाम मेरी तरफ से लगा दीजिएगा।
0: ठीक है जी, लगा देते हैं गाना, मैं चलाने जा रहा था गाना।
1: जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: जी, कौन है मेरे साथ?
1: अली रजा साहब, नाम तो सुना होगा, नाम तो काफी है। रमजान अनवर गुजर,
0: क्या
1: टॉल हाउस से
0: वेलकम
1: कहता हूँ।
0: वेलकम वेलकम, बिल्कुल।
1: और किया है इसका कुछ अक्कर जान प्यारी है, अली रजा डेडिकेशन और ओनली फॉर यू।
0: अच्छा,
1: कुछ अक्कर जान प्यारी है, पर जान तो प्यारा तू लगना है। वाह वाह कह रहे हो,
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: वाह वाह वाह,
0: क्या वाह वाह।
1: के था नंबर वन फैमिली रेडियो स्टेशन, रेडियो पाकिस्तान इट इज द 101 की सुपर हिट सबातों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात, गुड इवनिंग 101 कहता है फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग, दी वन एंड ओनली लेजेंडरी आरजे आउट क्लास आरजे अली रजा साहब के संग सुनने वाली अजीम समातों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात, गुड इवनिंग 101 कहता है लाहौर और उसके मजाफात में। ऑन ईयर कॉल का टाइम हुआ चाहता है रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 पर, टाइम कम काबला सर तकरीबन 30 मिनट बाकी है, सुपरस्टार आरजे अली रजा साहब के शो खत्म होने में जल्दी जल्दी आए और जल्दी कॉल मिलाए।
0: अच्छा, सिर्फ
1: और मोस्ट वेलकम करें।
0: थैंक यू बहुत शुक्रिया। सिर्फ इन्हें तरीफा की वजह तो ना दो महीने में शो कर नहीं आया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया रमजान गुजर साहब, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, रफाकतों का, जफाकतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें
1: सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। यकीन करें आपका अखलाक बिलखसूस और आपका अंदाज दिल में उतरता है और आपका रूह से और दिल से अदब करते हैं और आप दिल में बसते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली और सलामती वाली।
0: आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम कैसा लग रहा है, सुन रहे हैं आप आज?
1: सर प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपकी तरह खूबसूरत और टॉपिक के वाले से सर ये अर्ज करूंगा कि एक तो आपके शो में कॉल मिलानी बहुत मुश्किल है।
0: अच्छा,
1: और दूसरा कोई धार मंगले मेरे को पैसे नहीं होते।
0: ठीक है ठीक है,
1: एक धार नहीं दे सकता तो दूसरा तीसरा सर वो जो नाइट शिफ्ट आंदी है रमजान गुजर नु सप नजर आंदे ने साढ़े 11 बजे उठ के ड्यूटी जा।
0: वैसे रात को सर्दियों में ज्यादा मुश्किल होती है।
1: एक उदाहर नहीं दे सकता तो दूसरा तीसरा सर वो जो नाइट शिफ्ट आंदी है रमजान गुजर नु सप नजर आंदे ने साढ़े 11 बजे उठ के ड्यूटी जा।

0: आ गए जी गाने के बाद हम वापस, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम सलाम, की हाल है भाई जान? ठीक हो
0: जी? ठीक ठाक है भाई जान, तुसी सुनाओ।
1: बशीर अहमद निमकोला चुमिया बरसिद गल कर रहा भाई
0: जी। बशीर साहब की हाल है?
1: अरे अली बोल रहे, अली
0: अली बोल रहे हैं जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी, एक मुस्तफा ते अली ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ
0: ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਯਾਰ?
1: ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ।
0: ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ।
1: ਹਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਕਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਗਏ ਨਾ।
1: ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੋਨ ਕਿਤਾ ਪਾਈ ਆ ਦੱਲਾ ਤੇ ਆ ਲਫੀ ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਮੈਂ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ ਸੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਵਾਇਆ ਬਸਾਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੇ ਟੋਨ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ?
1: ਬਸ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ?
1: ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ।
0: ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨੇ।
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਮਕੋ ਵੇਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਹੀ
0: ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਿਮਕੋ?
1: ਇੱਥੇ ਚੁੰਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।
0: ਅੱਛਾ, ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਨਿਮਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
1: ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਨਿਮਕੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 20-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?
1: ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟਨਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ,
1: ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਹੱਥਾਂ ਵਗਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?
1: ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਸੁਣਨਾ ਵਨ ਵਨ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमें नज़ीर सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच नज़ीर, आपके बहुत शुक्रिया। हमें फातिमा सुन रही है वंस अगेन, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया। और हमें हाजी नवाज़ सुन रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। हमें साजिदा सुन रही हैं, आपका भी शुक्रिया। हमें रमज़ान गुजर सुन रहे हैं, आपका भी शुक्रिया जी। और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ?
2: ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ।
0: ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੈਂ?
2: ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ।
0: 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ?
2: ਵਾਜ਼ਾਂ
0: ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
2: ਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?
2: ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਲੈਓ ਵਾਲੀ ਆਰ ਜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰ ਜਿਹੜੇ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ,
2: ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਲ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ।
0: ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ।
2: ਚੱਲ ਆ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ, ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਏ, ਟਾਈਮ ਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ।
2: ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੱਟ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਜੀ।
0: ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਤਾ ਹੈ?
2: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਮ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਜਬ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਤਾ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਸੋਚਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ,
2: ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੋਚ ਜਬ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ।
2: ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੋ ਮੇਰੀ ਆਪਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
0: ਕਿਆ
2: ਉਹ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਤੋਂ
0: ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਆਂਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਂਦੀ,
2: ਭਾਂਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ।
0: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ
0: ਤੁਸੀਂ? ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਵੈਸੇ,
0: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 21-22 ਸਾਲ ਹੈ?
2: ਨਹੀਂ ਜੀ, 150
0: 150
2: ਫੋਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ
0: अच्छा 94 कट के 150 जी लियाकत साहब, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? ठीक है,
3: शुक्र अल्लाह का। ठीक साहब, मुझे तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है जब कॉल मिलानी हो ना।
0: कॉल मिलानी हो, जब कॉल मिलती नहीं है।
3: कॉल जब मिलती नहीं है तो फिर वो क्या कहते हैं, सबर होना चाहिए, सबर करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
3: जब मिल जाए तो फिर बातें होनी चाहिए।
0: फिर बातें होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और लियाकत कुछ कहेंगे?
3: हाँ, बस जबरदस्त प्रोग्राम, आवाज भी माशाल्लाह अच्छी है, और बाबा अच्छे से बार ही आपसे बात हो रही है।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत।
3: हाँ, और रात को भी आपका प्रोग्राम कभी कभी चलता है।
0: अच्छा, तो कहाँ पे, कौन से स्टेशन पे?
3: बानो मान पे यार।
0: अच्छा,
3: मेरे ख्याल से वो दीदी, वो क्या नाम है उनका, मसूर अहमद के साथ मैंने सुना था।
0: फरहान खान के साथ सुना होगा? फरहान खान के साथ, फरहान के साथ सुना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
4: जी, खुश आमदीद अली भाई, क्या हाल चाल है?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए अमरजा, क्या हाल है
4: भाई? थोड़े हाल है, बिल्कुल मैं ठीक ठाक, लाशपाश है।
0: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा।
4: अच्छा टॉपिक की क्यों टाइम कम है?
0: जी जी जी जी,
4: मैं ये कहता हूँ, जो बंदा मेरा भरोसा तोड़ जाए ना एक दफा, दोबारा उस पे भरोसा बहाल करने के लिए बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
0: ये काम मुश्किल लगता है आपको?
4: बहुत औखा काम है, मैं कहता हूँ वो बंदा अब सोने का बन के भी
0: ठीक हो गया
4: तो आप, मैंने भरोसा उस पे नहीं करना, या उस पे मेरे लिए वो मुश्किल काम है।
0: बिल्कुल ठीक है। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
4: जी प्रोग्राम अभी अभी नवाज पढ़ के थोड़ा सुना है।
0: ठीक हो,
4: मेरी तरफ से सभी सुनने वाले
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
4: वफा की जिंदगी बाकी रखिए
0: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये थे जी हमारे साथ अमरजा, और आखिरी कॉल लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, हमारे लास्ट कॉलर, क्या नाम है आपका?
5: सलीम दर्जी, छरे बाजार तो।
0: सलीम दर्जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋ।
5: मैं
0: जनाब दो बंदे बुलाए ने बारो फोन चुकन वास्ते, फोन बड़ा भाड़ा सी ताडा, चुकिया नहीं सी जा रहा।
5: बारिश हुई ना साडे,
0: बारिश हुई सारा पानी पै गया।
5: अच्छा जी, जो असी कोई कपड़े वगैरह सिलाई कर रही है ना, तो सानू कोई आके कहे ना ऐ सानू हुने छड़ दे ना पीछे करो, सानू हुने बना के दो, तो बड़ा मुश्किल काम लगता है।
0: अच्छा, जाहिर बात है आप लोगों को भी टाइम चाहिए होता है, कपड़े श्रिंक करने हैं, फिर कपड़ों को काटना है, फिर जाहिर बात है।
5: असी मगरो नहीं लाने, असी बना के देने लेडीज, तुसी भी लेके आओ, तुहानू बना के दिए लेडीज कपड़े।
0: अच्छा, मैं लेडीज पांदा ही नहीं। बहुत शुक्रिया सलीम।
5: अच्छा जी, ऐसी जिन्ने भी कॉलर आए ने बहुत अच्छी गल्लां कीतियां, सब नु सलाम अलैकुम।
0: बस कॉलर ने चंगियां कीतियां, मैं नहीं चंगियां कीतियां।
5: ठीक है, तुसी ते आला है के जना उत्ते
0: जनाब जनाब, शुक्रिया शुक्रिया,
5: पूरी मैनेजमेंट नु सलूट पे
0: सलूट
5: यार, आया करो, तुहाडी आवाज बड़ी सानू जड़ी ना तरपांदी है, जद नहीं ना आंदे
0: आवाज रिकॉर्ड कर लिया करो, सुनदे रिया करो, जद ना आई ते चीकू तो नहीं आगे? देख लो, मैंने आखिरी कॉल कह दिया था, लेकिन आपकी कॉल मिलनी थी बस। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
6: जबरदस्त,
0: प्रोग्राम सुन रहे हो
6: जी?
0: चलो आप जल्दी से रिव्यू दे दो आज के प्रोग्राम का, मैं कहाँ था?
6: होए होए भरोसा। आपने कहा था, आपने कहा होना, उसी सानू ला रहे हैं ते लाके ते गायब होंदे।
0: हाय हाय हाय हाय, देखो मैं तानू ला रहे हैं ते लाया, किसी होर शायद ते नहीं लाया।
6: बस बंदा की कवे,
0: चले चले, प्रोग्राम एंजॉय किया तो मुश्किल काम तो बता दो अपना, मुश्किल काम क्या लगता है? कॉल मिलाना?
6: नहीं नहीं, कॉल मिलाना नहीं, एक दफा उठ जाऊं दोबारा सोना।
0: एक दफा जब आंख खुल जाए तो दोबारा सो नहीं सकते जल्दी
6: जी, फुल ट्राई कर दो लेकिन
0: होता है, ये भी होता है, ये भी होता
6: है।
0: चले चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वेल लिसनर्स, ये था आज का प्रोग्राम और काफ़ी अरसे के बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े मज़े की बातें हुई। थोड़ा सा होता है कि आप काफ़ी अरसे के बाद आएँ और बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई लग रही होती हैं और आपको एक रवानी में आने में, एक वो कहते हैं ना, एक तसलसल रखने में थोड़ा सा एक दो शोज़ का टाइम लगता है, लेकिन कोशिश ये थी कि प्रोग्राम अच्छा करें और आप लोगों के साथ गपशप अच्छी रहे और आप लोगों को हंसाया जाए, आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें की जाए। थैंक यू सो मच उन तमाम लिसनर्स का जो प्रोग्राम में थ्रू आउट हमारे साथ मौजूद रहे, मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे, ऑफ एयर कॉल की, ऑन एयर कॉल की, फेसबुक पर मैसेज भेजे, चार साथ एक पे मैसेज भेजे या खामोशी से सुनते रहे, अपना नाम नहीं बताया, अपनी आवाज नहीं सुनाई, ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। आरजे अली रजा साइनिंग आउट, सिंग बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए डोमेस में अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, छोड़े जा रहा हूं आपको इस गाने के साथ।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

कैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो की

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा और चुप।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

his music, and then their magic. One Above FM 101.

0: Hello.
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

चल बल्ले उत्थे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने चल बंदे उत्थे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने ना कुछ साड़ी जात पहचाने ना कुछ सानू मन्ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। इस उम्मीद इस दुआ के साथ आप जहां रहें खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अगर आप रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के संग संग हैं तो आपको बताते चलें शब के इस पहर में आपका हमारा साथ होता है द लेट नाइट शो विद फरहान खान में आप और हम होते हैं। अपने दिल की ढेरों ढेर बातें लेके हम हाज़िर होते हैं, वो बातें जो आप हमसे कहना चाहते हैं, वो बातें जो आप हमसे करना चाहते हैं और वो बातें जो हम आपसे कहना चाहते हैं। दिल वालों की बज़्म सज चुकी है और इस बज़्म में आप हमारे साथ होते हैं शब के 12 बजे तक। आज की तारीख है 4 सितंबर सन 2026, जुम्मे के रोज़ आपका हमारा साथ होता है 101 इंटरनेशनल की इस ट्रांसमिशन को पाकिस्तान भर में सुना जाता है। इस आवाज़ के सुनने वाले पाकिस्तान भर में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेट के थ्रू जहां तक ये आवाज़ पहुंच रही है, सभी सुनने वालों को सभी चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस बज़्म का आप भी हिस्सा बन सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारा साथ निभा सकते हैं। FM 101 के ऑफिशियल पेज यानी के रेडियो पाकिस्तान FM 101 के फेसबुक पेज पे आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 4471 पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन भी ओपन है 0422111001 हमारे रابطے का नंबर जिस पे आपकी हमारी कनेक्टिविटी रहेगी, रابطے रहने चाहिए। वैसे आपके जिन लोगों से रابطے मनकता है ना, ऐसे लोग जिनसे आपका बड़ा एक मोहब्बत का ताल्लुक था, बड़ा प्यार का ताल्लुक था, उनसे भी रابطے बहाल कर लें। और आज के दौर में रابطے बहाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो पहले होता था ना, खतूत जा रहे हैं या टेलीफोन कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अब तो बहुत आसान है। अब तो ज़राए अबलाग इतना तरक्की कर गया है कि आपके पास बेशुमार रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप रابطے बहाल कर सकते हैं। वल जनाब, दिल वालों की बज़्म सज चुकी है, हमेशा की तरह इस बज़्म में आप हमारे साथ होते हैं, हम आपके साथ होते हैं। सो हमेशा की तरह दिल वालों की बज़्म महज एक महफिल नहीं बल्कि एक एहसास है। हाय हाय मैं दबुत, काश मैं का बुत दिलों से निकाल दें हम। सो जनाब, दिल वालों की बज़्म एक ऐसी बज़्म है जहां जज्बात की कदर होती है, जहां मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सांस लेती है, जहां अल्फाज दिलों की ज़ुबान बोलते हैं। ये वो जगह है जहां एहसासात ज़ख्मों पे मरहम बनते हैं, जहां हिजर की तड़प को समझा जाता है और वसल की खुशबू महकती है। सो जनाब, ये बज़्म उन लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई पे यकीन रखते हैं, जो धड़कनों की ज़ुबान समझते हैं और जो वफा को सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि इबादत समझते हैं। वेलकम टू द दिल वालों की बज़्म, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक हमें सुना जा रहा है। सभी सुनने वालों को दिल वालों की बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो शो है, आज के शो में मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, मैं तन्हा नहीं हूँ, मतलब इस स्टूडियो में मैं तन्हा तो होता भी नहीं,

0: लेकिन इस माइक, इस जो माइक्रोफोन इस वक्त मेरे सामने है, जो माइक मेरे सामने है, इस माइक को एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे एक नई आरज़े हैं, नई आवाज़ है, आप लोगों की समातों की नज़र करेंगे 101 इंटरनेशनल पे। इस वक्त हमारे साथ जनाब एक और खूबसूरत सी आवाज़ है जो कि हमारा साथ देंगी। कौन है हमारे साथ?
1: सबसे पहले तो तमाम समाइन को मेरा सलाम, और मेरा नाम है अहमद भट्ट और आप सुन रहे हैं FM 101। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया आज, थैंक यू।
0: इट्स ऑनर। अहमद आपको खुश आमदीद कहते हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 की इंटरनेशनल की इस ट्रांसमिशन में। कैसे मिजाज हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे?
0: अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। वल जनाब अहमद भट्ट साहब हमारे साथ रहेंगे, इस बज़ में हमारा साथ देंगे और साथ रहेंगे। अच्छा, ये बेसिकली हम इसको कहते हैं ये दिल वालों की बज़्म है,
1: क्या,
0: और जो दिल की सच्चाई पे यकीन रखते हैं वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं।
1: यस सर, मैं सही जगह पे आया
0: सोच लें।
1: यस सर,
0: देखना बाद में मुश्किल ना पड़ जाए आपके लिए।
1: नहीं सर,
0: चलें, गुड है। अहमद वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान FM 101। वेल जनाब अहमद हमारे साथ रहेंगे और आज का शो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट सा है, इस हवाले से डिफरेंट है कि आज का जो मौजू है ना विच इज़ वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट। मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम के शुरू में आपके साथ इस मौजू को मैं डिस्कस करूं। अहमद के लिए ये सरप्राइज़ होगा और मेरे ख्याल में सरप्राइज़ अच्छे होते हैं ना। आपने कभी किसी को सरप्राइज़ दिया?
1: सर दिया तो बहुत है।
0: अच्छा, आपको कभी किसी ने सरप्राइज़ दिया?
1: नहीं सर, कम लोग हैं ऐसे
0: कम है दुनिया में।
1: यस सर।
0: अच्छा, वैसे ना सरप्राइज़ जो है ना वो अच्छे होते हैं। आप किसी अपने को, किसी प्यारे को सरप्राइज़ देना किसी चीज़ का, तो वो कहता है यार क्या बात है, आज मुझे बड़ा मज़े का सरप्राइज़ मिला।
1: दिन बन जाता है सर,
0: है ना?
1: यस yes.
0: दिन भी बन जाता है और दिल भी बन जाता है और मूड भी अच्छा हो जाता है।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना। अच्छा जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी जो है ना वो ज़रूरत के तहत या ख्वाहिशात के तहत गुजारनी चाहिए। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, एक बड़ा मज़े का, एक इंटरेस्टिंग सा आज का हमारा मौजू है। हम अपनी ज़िंदगी तो गुजारते हैं, ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ना अहमद
1: जी सर,
0: ये बड़ा मुख्तसर सा सफ़र है।
1: यस,
0: हम सब अपनी ज़िंदगियों का थोड़ा सा मुहासबा करें और थोड़ा सा कैलकुलेट करना शुरू कर देना अपनी लाइफ को, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि यार ये इतना वक्त गुजर गया पता भी नहीं चला।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें ना इंसान की ज़िंदगी में ना मुख्तलिफ फेज़ आते हैं। एक फ़ेज़ होता है जिसमें इंसान की ज़रूरियात होती हैं और एक फ़ेज़ होता है जिसमें इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। ये पैरेलल चलती रहती हैं, एक ज़रूरियात होती हैं और एक ख्वाहिशात होती हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है और बाज़ मकामात पर इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ इंसान की ख्वाहिशात जो होती हैं ना वो बाज़ दफ़ा बड़ी बेलगाम सी होती हैं और लामहदूद होती हैं, यू नो, लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं। इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश कर सकता है। अब ज़रूरियात ऐसी हैं कि जो दैट इज़ वेरी एसेंशियल,
1: बिल्कुल,
0: वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, वो आपकी लाइफ लाइन होती है कि आप उसके बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अच्छा, अब क्या होता है कि बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइफ इट्स चंद सांसें हैं, चंद मुलाकातें हैं और कुछ खुशियां हैं,
1: कुछ गम है,
0: कुछ गम है और कुछ ख्वाब हैं, और फिर उनके साथ कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं,
1: कुछ अधूरे रह जाते हैं,
0: कुछ अधूरे रह जाते हैं और कुछ ख्वाहिशात जो है ना वो उम्र भर दिल में रह जाती हैं। अब इंसान जब पैदा होता है ना उसकी कुछ ज़रूरियात होती हैं
1: और कुछ ख्वाहिशात होती हैं,
0: कुछ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना आप देखिएगा कि जो ख्वाहिशात का दायरा ना वो वसी होता जाता है इंसान की। हम जब छोटे होते हैं ना तो हमारी ख्वाहिशात बड़ी महदूद होती हैं। सपोज़ छोटा बच्चा है, वो ज़िद करेगा किसी चीज़ को लेने की और वो किसी ग्रॉसरी शॉप पर चला गया, उसने चॉकलेट की ज़िद की, उसने चिप्स लेने की ज़िद कर ली या कोई चीज़ खाने पीने की ज़िद कर, बड़ी महदूद सी उसकी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना इंसान की ख्वाहिशात का जो दायरा है ना वो बड़ा वसी हो जाता है। अब बचपन में जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक खिलौना पूरी ज़िंदगी होता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे को अगर एक खिलौना दे दें ना उसकी वो पूरी लाइफ है, मतलब वो उसी के अंदर वो इतना मस्त होगा, वो इतना खुश होगा। आप ये तजर्बा करके देखें, वो मतलब उसकी खुशी ना ख़त्म होने वाली खुशी होती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जवानी में इंसान जब थोड़ा वक्त आगे गुज़रता है तो इंसान की जो खुशियाँ हैं ना, या खुशियों का जो दायरा है ना, वो चेंज होता जाता है। जैसे मैंने कहा, एक बच्चे को एक खिलौना ले दिया, वो खुश हो गया, उसी के अंदर उसने कहा यार मज़ा आ गया, खिलौना मिल गया, उससे खेलता है, तोड़ता है, कुछ भी करता है, वो ही बिकम वेरी हैप्पी। उसकी जो मुस्कुराहट है, उसकी जो खुशी है, आप कभी महसूस करें उस बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो बिल्कुल साफ़ होता है,
1: बिल्कुल
0: उसका दिल बिल्कुल साफ होता है, उसके अंदर ना बोझ होता है, ना हसद होता है, ना कीना होता है, ना गुस्सा होता है, ना गम होता है, कुछ भी नहीं होता, खुशी होती है बस। हाँ, गुस्सा टेम्प्रेरी होता है, ख़त्म हो जाता है, नाराज़ी उसकी थोड़ी देर की होती है, ख़त्म हो जाती है।
1: यस,
0: वो इसीलिए कहते हैं ना कि आपने जीना सीखना है तो बच्चे से सीखें।
1: बिल्कुल,
0: कैसे वो जीता है
1: विदाउट एनी टेंशन, कोई फिक्र फका नहीं।
0: फिर उसके साथ साथ वो नाराज़ हुआ है और चंद लम्हों बाद वो राज़ी हो गया, जिससे नाराज़ हुआ उसके साथ खेलना शुरू हो गया। बहन भाइयों से लड़ाई हुई है, थोड़ी देर के बाद वही बहन भाई लड़ना खेलना शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब ये भी नहीं याद रहता कि लड़ाई हुई थी। सो जीना, अगर आपने, वो बड़े कहते हैं ना कि आप अपने अंदर हमेशा एक बच्चा जिंदा रखें,
1: बिल्कुल
0: बच्चा हमेशा होना चाहिए
1: जी।
0: तो वो जो बच्चा है ना, वो इंसान को ना बड़ा कुछ सिखाता है। अच्छा, फिर जवानी जब होती है ना, आप थोड़ा सा वक्त जब गुजरता है, उसमें आपकी जो सक्सेस होती है ना यार, वो आपकी पूरी दुनिया बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप जवान होते हैं, आपको कोई, सपोज़ आप मैट्रिक में आपके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ गए, नंबर्स आ गए, ओ लेवल्स में बड़े अच्छे ग्रेड्स आ गए, आप बोले यार कमाल हो गया, मज़ा आ गया यार, यार दिस इज़ द लाइफ, मतलब वो आपको ना, वो आपकी पूरी दुनिया बन जाती है। छोटे होते आपका खिलौना आपकी दुनिया होती है,
1: वो खुशी आपको मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ तरह से मिलती है और आप खुश हो जाते हैं।
0: अच्छा, फिर एक वक्त आता है जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है, उसके पास हर चीज़ होती है, वो जो खुशियाँ वो हासिल करना चाहता है, जो ख्वाहिशात उसकी होती हैं वो भी पूरी हो जाती है, और जिस ख्वाहिशात के लिए वो दिन रात मेहनत करता है वो भी पूरी हो जाती है, और जिन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो काम करता है, मेहनत करता है, वो भी उसको मिल जाती है। एक वक्त आता है इंसान के पास तकरीबन
1: सब कुछ,
0: वो चीज़ें जिसकी वो ख्वाहिश करता है। अच्छा, लेकिन इंसान की जबिल्लत में एक चीज़ है, उसकी जब एक ख्वाहिश पूरी होती है ना,
1: वो तो दूसरी की तरफ पहुंच जाता है,
0: फिर दूसरी पूरी होती है, तीसरी, मतलब वो
1: कभी ना रुकने वाला सिलसिला जो है ना चलता रहता है,
0: यानी मुसलसल। और मतलब कभी ना कभी कोई ख्वाहिश है वो जन्म ले लेती है। अब क्या ख्वाहिशात, बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप, यू वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ, है ना, आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है कि यार मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूँ, एक सक्सेसफुल इंसान, हर बंदे की तकरीबन होनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश होनी भी चाहिए कि आप एक कामयाब इंसान बने। अच्छा, फिर उस कामयाबी में अहमत क्या होता है कि हम अपना सुकून खो बैठते हैं,
1: सेक्रीफाइसेस काफ़ी ऐसे आपको करने पड़ते हैं उस तक पहुँचने के लिए। कि
0: आप देखें ना, कि मैं आज एक चीज़ महसूस कर रहा था, हम अपनी ज़िंदगी की इस दौड़ में ना, जद्दोजहद में, स्ट्रगल में, बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, अपने आप को मिस कर रहे होते हैं, हम कहीं कई दिन अपने आप से कलाम ही नहीं करते, अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, अपने आप को देखते ही नहीं हैं। चलो अपने आप से तो निकल जाओ, हम कुदरत को ही नहीं देखते।
1: बिल्कुल,
0: कुदरत के हसीन नज़ारे, आज मौसम बड़ा खूबसूरत था, लाहौर भर में खूबसूरत सा मौसम, बारिश रही और शाम को हर चीज़ खिली खिली सी रही।
1: बिल्कुल,
0: मतलब आप दरख्त देखें ऐसे है जैसे, मतलब,
1: और मौसम भी बहुत प्यारा, वॉक करने का मौसम था आपका शाम के टाइम,
0: वॉक करने का मौसम। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की मुसलसल दौड़ के अंदर ना, अपना तो छोड़ के हम कुदरत को नहीं देखते।
1: बिल्कुल,
0: और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने शो में कि आपको कितने दिन हुए चांद देखे, आपको कितने दिन हुए गौर से सूरज को एक नज़र देखे, आजकल तो वैसे देखना भी बड़ा मुश्किल है
1: सूरज हमें देखता है,
0: सूरज आज गुस्से से हमें देखता है। आपको कितना दूर है कि किसी पुरफजा मकाम में गए, आपको कितनी देर हुई है, आप इवन लाहौर बागों का शहर है, आज भी बहुत से बाग हैं यहाँ पे, उन बाग में जाके گرینری دیکھیں, درخت دیکھیں, خوبصورت جہان دیکھیں, اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں, اس سے لطف اندوز ہوں. نہیں, کیونکہ ہم مسلسل اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں,
1: زندگی کی دوڑ میں مصروف.
0: خواہشات ہیں, لامحدود خواہشات ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے.
1: بالکل.
0: دیکھو, ضروریات پوری ہو رہی ہیں الحمدللہ, تقریباً اللہ تعالیٰ ضروریات سب کی پوری.
1: بالکل.
0: یہ ہماری خواہشات ہیں نا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور ایک خواہش پھر دوسری خواہش
1: پھر تیسری خواہش,
0: اپنا سکون ہم نے خراب کر لی ان خواہشات کے چکروں میں. سو جناب, آج کا موضوع ہے, اور آپ لوگوں نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ضرورت کے تحت یا خواہشات کے تحت گزارنی چاہیے. اچھا, ہمارے ساتھ احمد بٹ صاحب ہیں, ہمارے آج کو ہوسٹ ہیں. احمد, ہاؤ واز یور ٹریننگ, کیسا رہا وہ؟
1: سر, ٹو بی آنیسٹ, ٹریننگ ایکسپیرینس واز کوائٹ گڈ, بہت مزہ آیا. لٹرلی جو سوچ کے آیا تھا کہ وہ نہیں ہے, یہ سب لاکھ درجے بہتر ہے.
0: اچھا,
1: مطلب ان دو مہینوں میں کیمرہ شائع, بولنے سے جھجکنے والا, پریزنٹیشن سے بھاگنے والا ایک لڑکا, مطلب کہ ریڈیو میں اتنا انٹرسٹ لے چکا ہے کہ اب وہ ہر چیز کانفیڈنٹلی کر لیتا ہے, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کریڈٹس ٹیچرس کو دیا جائے, اور آر جیز کو دیا جائے, جو ایسا ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, ان سب کا بہت شکریہ.
0: بہت خوب, اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں, اور دیٹ واز اے گڈ ٹائم, ہے نا؟ آپ لوگوں نے انجوائے بھی کیا, اور میرے خیال میں یو گائز آر لکی پیپل کہ آپ لوگوں کو اتنا زبردست انوائرمنٹ ملا.
1: بالکل.
0: اور ہمارے جتنے بھی سینئر تھے انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ بھی کیا, ٹائم بھی دیا, اینڈ یو گائز آر سو لکی, آئی مسٹ سے. سو ایک ٹریک چلاتے ہیں یار, ہے نا, کیا خیال ہے؟ گانے شانے سنتے ہیں؟
1: کوئی انٹرسٹ؟ ان کے اندازے کرم
0: آئے ہے. کن کے؟
1: نصرت فتح علی خان.
0: میں ویسے پوچھوں کن کے؟ نہیں
1: نہیں, آج کل تو اپنے ہی چل رہے ہیں سر.
0: اچھا, کیا ہوا ہے, بریک اپ ہو گیا؟
1: نہیں سر.
0: ہاں,
1: گولز پہ فوکس کیا جا رہا ہے.
0: او مائی گاڈ, گولز, گولز سر, تو پھر گولز ہے نا, کون سے والا گول بولے تو نہیں, وہ جو فٹ بال میں ہوتا ہے, ہاکی میں ہوتا ہے, یار گول پہ اکثر کہتے ہیں نا, کوچ کہہ رہے تھے یار گول پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے گول کرنے آج, گول کر کے آنا ہے.
1: سر آفٹر بیچلر سے نا, ذرا ڈگری کے بعد جو انسان نئی نئی موٹیویشن لے کے پیدا ہوتا ہے نا کہ کچھ کرنا ہے, وہ والی موٹیویشن چل رہی ہے ابھی, ذرا
0: اچھا اپنے
1: پہ کام کیا جا رہا ہے,
0: یعنی کچھ کرنا ہے, کر کے دکھانا ہے دنیا کو.
1: بالکل ایسے,
0: ایک دن میں بڑا آدمی بن کے دکھاؤں گا, اور میں بتاؤں گا احمد ایک بہت بڑا انسان. نہیں, دیٹس گڈ, ایک اچھا اسپرٹ ہے
1: یہ. یس سر,
0: آپ ایٹ لیسٹ یو آر تھنکنگ سم تھنگ, آپ سوچ رہے ہیں کہ یار آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, مجھے کچھ کرنا ہے. کیریئر پاتھ اور کیریئر کے اڈاپٹیشن جو ہے نا, یہ بڑا ایک اہم چیز ہے.
1: یس,
0: اینڈ دس از دا ٹائم ویئر یو ہیو ٹو اڈاپٹ یور کیریئر, آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے.
1: بالکل.
0: اور اب تو مجھے نا, میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, کہ یار آپ لوگ بڑے کنسرن ہیں اپنے کیریئر کے حوالے سے, اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنے فیوچر کے حوالے سے. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی
1: سر, کمپٹیشن
0: زیادہ ہو گیا نا.
1: بالکل,
0: کمپٹیشن زیادہ ہو گیا, ریس زیادہ ہو گئی ہے, اور خواہشات زیادہ ہو گئی.
1: ویسے خواہشات والا فیکٹر تو کبھی جاتا ہی
0: نہیں, اب زیادہ ہو گئی.
1: بالکل,
0: پہلے نا بہت سی اکتفا کر لیا جاتا تھا, میں نا تکیا کر لیا, اچھا ٹھیک ہے یار, ہے خوش ہیں بس, ٹھیک ہے.
1: اب وہ اسپرٹ ہے, کرنا ہے تو کرنا ہے, چاہیے تو چاہیے,
0: وہ بھی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کمپٹیشن جسے کہتے ہیں نا, میں اس کو پازیٹیو کہوں نیگیٹو کہوں وٹ ایور, لیکن ایک کمپٹیشن کی ہو گئی یار, اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. وہ اس لیول تک پہنچے تو مجھے بھی اس لیول, دیکھیں ٹاسک ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن وہ اس میں نا آپ کی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے.
1: بالکل,
0: دیٹ از میٹر الاٹ. اچھا جی, احمد ہمارے ساتھ ہیں, اور احمد ایک ٹریک کی, پتہ نہیں اچانک سے اس کو کیسے خیال آیا اس ٹریک کا. سو احمد کی وش پہ, ان کی ریکویسٹ پہ آج پہلا ٹریک سلاتے ہیں, اینڈ دا ٹریک آئی ایم گونا پلے, جیسا کہ احمد نے بتایا کہ جی آج کل وہ فوکس کر رہے ہیں اپنے کیریئر کے اوپر, لیکن یہ جو انداز کرم ہے یہ اس ٹائم ہم چلائیں گے. دس از اے بیوٹیفل ٹریک, بٹ میں نے چلایا بھی نصرت فتح علی خان صاحب کی خوبصورتی آواز میں. سو میرے خیال میں یہ والا ورین چلاتے ہیں, یا دس از گڈ. آج ڈاکس اس کو بڑے شوق سے چلاتے ہیں, اور ہمارے کچھ کالرز آ کے کہتے ہیں یار وہ والا چلاؤ جی.
1: یس.
0: سو جناب, بڑھیں گے آج کے پہلے ٹریک کی جانب. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے مجھے کہتے ہیں فرحان خان. آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو پیاری سی زندگی آپ گزار رہے ہیں اور ہم لوگ گزار رہے ہیں, یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ خواہشات یا ضروریات، آج کا ہمارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101. یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ خواہشات یا ضروریات، آج کا ہمارا موضوع ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101.

0: रुकना सीखी तितली कैसे रिम
1: आंखों
0: में ये पलने वाले ख्वाब न बुझ में पाए आंखों में ये पलने वाले ख्वाब न बुझने पाए दिल के चांद चिराग की देखो लो न हो मथम आंख हंस पड़ा है बहुत ज्यादा हंस पड़ता है बहुत ज्यादा गम में भी इंसान गौर कीजिएगा फरहान के हंस पड़ता है बहुत ज्यादा गम में भी इंसान बहुत खुशी से भी तो आंखें हो जाती हैं नम
1: अरे वाह अरे वाह
0: क्या सच में शायरी है अमजद साहब की क्या
1: बहुत खूब बहुत खूब
0: अहमद आपको कैसी लगी
2: बहुत खूब बहुत अच्छी थी
0: अच्छी थी ना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अहमद से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान
1: आप इकट्ठे खेलते रहे मुझे
0: ऐसा लग रहा
1: है ना
0: नहीं वैसे बहुत प्यारी आवाज है आपने अच्छा किया बुलाया और जैदी साहब को भी मेरा सलाम उनका तो आप इतना जिक्र अब अगले प्रोग्राम में आप बिस्किट लाइएगा वो चाय लाएंगे
1: हाँ नहीं आज भी मेरा प्लान था फिर मैं कुल्फियाँ ले आया
0: अच्छा
1: चाय के साथ कुल्फी हमने खाई है
0: ये सही है
1: क्या आपने कभी ट्राई किया चाय के साथ कुल्फी
0: नहीं जी नहीं अभी अल्लाह ने
1: बादाम वाला
0: सही रखा हुआ है
1: नहीं लेकिन आप किसी जब दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना ट्राई कीजिएगा
0: अच्छा चलें करेंगे जब ये चाय के दिमाग गड़बड़ हो तो फिर कर लेंगे ट्राई और वो एक भाई आए थे उन्होंने मुझे सलाम कहा था मुझे नाम तो नहीं पता फरहान वालेकुम अस्सलाम जीते रहे जो लोग भी याद रखते हैं और फरहान का फरहान आज वो वाला सॉन्ग चलाया था कि नहीं
1: नहीं अभी नहीं चलाया
0: है
1: नहीं नहीं चलाएंगे और आपने ना शो सुनना है फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने शेर पढ़ा और मैं तो चाहे मुझे लगा कि आप आएंगी और आप बताएंगी कि मक्स को बाग में जाने ना दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा हाय हाय हाय चले मैं आपको बताता हूँ
0: ठीक है जी आबाद रहे बहुत खूबसूरत शो करते हैं
1: चले बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच Original, that was Parveen Asif हमारे साथ थी एक कॉलर और ले लें
2: जी जरूर
1: क्या ख्याल है
2: बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम
3: जी अस्सलाम वालेकुम
2: जनाब कौन और कहां से बात कर रहे हैं
3: जी मैं अब्दुल हमीद अभी अभी बॉडी जट ने याद किया चलो कॉल ना मिले एक वक्री गल जे मिल जावे ते अभी हाजिर ही होने वाले
2: क्या बात
3: अब्दुल हमीद बरसी वाला धोखा बाद गाँव मेरा हर चंद
2: जी
3: बिल्ली का काम चूहे फड़ लेना बाबा जी चूहा जरा ना बिल्ली गल पै गया कराची
2: अच्छा फिर आपने क्या किया आपने भी डंडा पकड़ा
1: नहीं है दो
3: नहीं
1: तुम यह दसो के चूहा चूहा बिल्ली गल पै गया तो तुम दो गल पै गए
3: नहीं तमाशा वेखता है जरूर
2: जिस हमारे टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है कि जिंदगी किसके तहत गुजारनी चाहिए
3: टॉपिक अच्छा देखो जी जरूरत भी अभी आप बताई मैं अपने घर की गल करता दो मेरी नवा एक मैं आप मेरी बेगम
1: बेगम एक
3: तीन फ्रिजा
1: दो मेरी नुआ ते दो मेरी बेगमा ते
3: एक बेगम
1: चलो अल्लाह बरकत
3: बहुत अच्छी आवाज बहुत सारिया दुआवां तुहाडे वास्ते यार
2: शुक्र बन गया
3: चलो अल्लाह तुहानू खुश रखे नीला आपी आई ना साजदा भैन है ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ।

0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਮਿਲਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ
1: ਉਹ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ
2: अच्छा मैं अभी इंतजार में हूँ, मेरे ख्याल में मैं ही बता दूँ, मग्स को बाग में जाने ना दीजियो कि नाक खून परवाने का होगा। चूँकि मुझे उम्मीद थी कि परवीन जो है ना वो कुछ ना कुछ बता देंगी, तो क्यों ना मैं बता दूँ।
0: बिल्कुल सर,
2: क्या ख्याल है,
0: रिवील किया जाए।
2: अच्छा ये बेसिकली ना इट्स अ डीप फिलॉसफी, शायरी, शायर जो है ना बाज़ दफ़ा ऐसी गहरी बात कहता है, ऐसी प्यारी बात कहता है कि इंसान सोच में पड़ जाता है, और बाज़ दफ़ा शायर शायरी के अंदर ऐसी बात कह जाता है कि इंसान को लगता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी का हाल है दिल बयान किया जा रहा है।
0: बिल्कुल रिलेट कर जाता है ना, जब तो चीज का मजा आ जाता है
2: तो वो रिलेट कर रही होती है ना हर इंसान। अब नॉर्मल शायर अपने एक अंदाज से लिखता है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी एक परसेप्शन होती है, अपना ख्याल होता है, अपनी सोच होती है लिखने की
0: जी।
2: अब जो पढ़ने वाला होता है उसका अपना एक जिंदगी का जाविया होता है चीज़ों को रिलेट जैसे अपने का वो कर रहा होता है, लेकिन बात शायरी होती है जिसमें बड़ी डीप फिलॉसफी होती है और दर्द होता है, कर्ब होता है, मोहब्बत होती है, ये सब चीज़ें मिली जुली होती हैं। अच्छा इसमें ना बेसिकली वो कहता है कि जी मग्स को बाग में जाने ना दीजियो कि नाक खून परवाने का होगा। इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि जी मग्स बेसिकली कहते हैं, जी परवीन अगर आप सुन रही हैं तो शहद की मक्खी को कहते हैं।
0: अच्छा।
2: जो शहद की मक्खी है उसको मग्स कहा जाता है। वो कहते हैं कि जब वो अगर बाग में जाएगा तो वो फूलों का जो है ना रस उसको चूसेगा, और कुछ जो रस जो है ना वो मोम में बदल जाता है जिससे छत्ता बनाया जाता है। आपने देखा होगा ना छत्ता बनता है।
0: बिल्कुल,
2: मोम जो जब वो रस चूसता है फिर उसके बाद कुछ रस जो है ना मोम में बदल जाता है।
0: बिल्कुल,
2: और जब छत्ता बनाया जाता है तो कुछ रस जो है ना शहद में बदल जाता है, और जबकि वो जो छत्ता है ना उसको तोड़ दिया जाता है, तो वो जो शहद है ना उसकी जो मोम है ना उससे उसको अलग कर लिया जाता है, शहद को अलग से निकाल लेते हैं। शहद जब निकल जाता है स्क्वीज करके तो फिर उसकी जो मोम है ना वो अलग हो जाती है। अब वो जो मोम है ना उस मोम से शमा बनती है, और जब शमा जलती है तो जब शमा जलेगी तो परवाना तो उस पर लपकेगा, और जलना तो फिर उसका मुकद्दर बन जाएगा ना। सो लिहाजा वो कहते हैं कि आप जो मक्खी है ना उसके बाग में नहीं जाने दें। शहद की मक्खी से वो एक इल्तजा कर रहा है, या वो कह रहा है कि आप जो मक्खी है ना बाग में ना जाए, ना वो रस चूसे और ना ही उससे जो है ना वो जो छत्ता बनेगा, और छत्ता जो है ना वो फिर मोम बनेगा, मोम पर फिर वो शमा जलेगी यानी कि आग।
0: बिल्कुल,
2: आग जलेगी। अब वो जब आग जलेगी उसके इर्द गिर्द परवाना आएगा, और परवाना जो है ना वो उस आग पे लपकेगा और वो जल जाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि जी मग्स यानी शहद की मक्खी को बाग में जाने ना दीजिए कि नाक खून परवाने का होगा, कि बेचारा ऐसे ही परवाना मर जाएगा। तो ये परवाने जो है ना ये भी अपने अंदर एक दीवाने होते हैं।
0: बिल्कुल,
2: ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, ये बस जान की बाजी लगा जाते हैं। तो ये जो है ना ये इट्स अ डीप फिलॉसफी, और ये हमारे जो शायर हजरात हैं ना जो लिखने वाले होते हैं, जो डीप लिख रहे होते हैं डीप थॉट के साथ
0: जी,
2: वो दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं, एक दरिया को पूरे कूजे में बंद कर। तो ये दिस इज़ दैट काइंड ऑफ, आई एम श्योर जो सुनने वाले हैं उनको उन तक ये बात
0: समझ आ गया होगा,
2: पहुंच गई होगी। एक ट्रैक ना चलाएं, कॉलर है यार काफ़ी देर से,
0: ओके
2: फिर उसके बाद ट्रैक चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, क्या हाल हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कौन साहब कहाँ से?
3: जी सैयद गुलाम अब्बास करोटा सईदा सियालकोट से।
2: सैयद गुलाम अब्बास
0: सियालकोट से,
2: हाँ सियालकोट वाले भाई बाजी मार गए वैसे,
0: है ना?
3: ये तो नजर आ रहा है जो है ना, अक्रम भाई की भी कॉल लगी थी, उनसे पहले भी एक कॉल सियालकोट से आपको लगी, ठीक है। तो मक्स तो जो है ना मैं तो ट्राई कर रहा था, आपने मेरा ख्याल कुछ बताया है कि मक्खी की एक किस्म है जिसे मक्स कहा जाता है
0: जी, शहद की मक्खी।
2: हाँ
3: तो वो उसके बाद जो है ना, आज आपका मौजू माशाल्लाह जो है ना बड़ा बेहतरीन मौजू और काफी अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिली
2: सर।
3: परवीना भी कराची से थी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उन्होंने जो है ना बताया, और माशाल्लाह उनकी शायरी भी जो है ना, वो जब आती है तो शायरी लाजमी आपको सुनाती है
2: जी।
3: आप हो या जो है ना जो भी हो, उनके साथ वो शायरी की गुफ्तगु जो है ना करती हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा अंदाज है उनका। मेरी तरफ से उन्हें सलाम
2: जी। वालेकुम सलाम।
3: और आपको, आपकी पूरी टीम को सलाम
2: सर।
3: बात है जरूरत, जरूरत तो हर हाल में पूरी करनी पड़ती है भाई।
2: बिल्कुल ठीक,
3: ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, ख्वाहिश रखना लाजिम है।
0: बिल्कुल,
3: ख्वाहिश की तमन्ना, आरजू, तड़प, तलब, चाहत, मोहब्बत, ये इसी कबील के अल्फाज हैं, इसी से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज हैं। ये अल्लाह ने भी एक ख्वाहिश रखी हुई है हमसे, अल्लाह ने भी हमसे ख्वाहिश रखी हुई है ना कि हम उसकी राह पर चलें। ठीक है, तो जब हम उसकी राह पर चलते हैं ना, तो फिर वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता जाता है।
2: बिल्कुल ऐसे
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना जिंदगी की जितनी ख्वाहिशें की हैं तो पूरी हुई
2: माशाल्लाह।
3: बड़ा उस जात का करम है, उसकी जो है ना कह लें कि उस जात ने जो है ना कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं दिल में कि जिसे हम कहें कि जो है ना ये रब ने नहीं पूरी की।
2: हाँ,
3: एक ख्वाहिश है,
2: बड़ी खुशकिस्मत,
3: एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है कि हम कश्मीर को आजाद देखें
2: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये भी
3: ख्वाहिश हमारे दिल में है और हम इसके लिए दुआ भी करते हैं
0: इंशाल्लाह।
3: ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फरहान भाई के आपके साथ आए हुए आज जो है ना न्यू कमर है मिस्टर अहमद भट्ट साहब, उनको भी वेलकम और अस्सलाम
0: वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका,
2: जीते रहें
3: माशाल्लाह। काफी खूबसूरत आवाज का इजाफा हो रहा है आपके जो है ना लाहौर स्टेशन।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही।
3: जी जी जी, बिल्कुल जो है ना इनकी आवाज बहुत पसंद आई मुझे।
2: बहुत शुक्रिया जी,
0: बहुत शुक्रिया आपका सर।
2: शुक्रिया मैं करूँ।
3: अल्लाह हाफिज़।
2: ओके अल्लाह हाफिज़। अहमद की आवाज़ पसंद आई है, मैं भी अहमद की तरफ से शुक्रिया। अच्छा एक कॉलर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम।
4: कौन साहब, क्या हाल है?
2: बिल्कुल सर ठीक ठाक। कौन साहब, कहाँ से?
4: फरहान भाई, आपके शो में बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है
2: सर। मैं माजरा चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ सबसे।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे आपके फैंस ही बहुत ज्यादा हैं, अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
2: जी जनाब।
4: तो सर आमन भाई को भी मेरा सलाम, जो आपके ट्रेनिंग आए हुए हैं।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: तो जो वो शेर था ना, वो साकिब लखनवी का शेर था,
2: मस्को
4: बाप ने जाने ना दो, खून परवाने का होगा। तो मेरी तो काज नहीं लगी, बहरहाल मैंने वो साजार को भी पढ़ा हुआ है, और मौजूदा जो वसी शाह हैं मौजूदा दौर के, अब्बास ताबिश हैं आपके, वो खालिद शानी साहब हैं। तो बहरहाल अब आता मैं टॉपिक पे
2: सर,
4: ख्वाहिशात और जरूरियात
2: सर।
4: तो हजूर की हदीस है कि आदमी को दो वादियां मिल जाएं सोने की भरी हुई, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा।
0: बिल्कुल।
4: और इंसान के पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो बहरहाल ख्वाहिशात लामहदूद नहीं होनी चाहिए, महदूद हों, और ख्वाहिशात का तसव्वुर जब तक जिंदगी है उस वक्त तक कायम रहता है, और बाकी जरूरियात जो है ना बुनियादी, वो तो आदमी के लिए इतना तो कमाए ना, उसकी बुनियादी जरूरियात तो पूरी हों, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, और उसके बाद फिर जिंदगी तो चलती रहती है ना।
2: बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक ठीक हो गया सर।
4: एक मैं कथा पेश करूंगा
2: जी जी,
4: गुलाम अहमद कासिर का, टाइम थोड़ा है
2: जी जी जी,
4: अहमद भाई के नाम।
2: वाह क्या बात।
4: बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स के जिसका मुझे नाम भी नहीं आता,
2: क्या बात।
4: करूंगा क्या जो हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता,
0: क्या कहने सर।
4: दुआओं में याद रखें।
2: ओके सर,
0: बहुत शुक्रिया, हाफिज़।
2: अच्छा जी, एक ट्रैक चलाएंगे, उसके बाद दोबारा हम लौट के आएंगे। और आपका मन कभी अटका कहीं पे? सोच में पड़ गए यार, मुश्किल सवाल ही। चले आप सोच लें, जब हम वापस आते हैं ना तो इस सवाल का जवाब आपसे भी लेंगे। अगर आपका मन कहीं अटक गया है, कहीं अटका है और किसी बेपरवाह के साथ अटका है और फिर उसकी जो लापरवाहियाँ हैं, हाय हाय हाय हाय, कि मुझे ना रिक्वेस्ट की गई थी, मैंने लास्ट शो में चलाया था लेकिन अभी एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उन्होंने, सो दिस इज़ फॉर यू, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की खूबसूरत सी आवाज़ को शामिल करेंगे, एंड द ट्रैक इज़ कॉल्ड मन अट गया बेपरवाह दे नाल।

रहीम इब्तदाई प्रोग्राम रब के बाबरकत नाम से, उस नाम से जिसकी कब्जा कुदरत में कुल जीरो की जान है, उस नाम से जो हम सबका खालिक है, मालिक है, राजिक है, हम सब के रिज की तकसीम का मालिक है। आगाज़ गुफ्तगू, आगाज़ कलाम, आगाज़ प्रोग्राम रब के उस बाबरकत और अजीम शान नाम के साथ जिसने कुव्वत गोयाई अता की। कुछ लम्हों के लिए मुझे लगा था कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पा रही, और जब मैंने दोबारा अपने कंसोल यूनिट को चेक किया तो मैंने कहा अच्छा एक बटन जो है वो काम नहीं कर रहा, बल्कि एक बटन सेट नहीं है। उस बटन को सेट किया तो आप तक आवाज़ पहुंची, तो हकीकतन ये आवाज़ उस बटन ने नहीं पहुंचाई, हकीकतन आप तक जो आवाज़ पहुंच रही है वो उस रब्बे कायनात के करम से पहुंच रही है, जिस रब्बे कायनात ने हमें ज़बान सिखाई है, जिस रब्बे कायनात ने हमें बोलना सिखाया है, जिस रब्बे कायनात ने हमें दिमाग दिया है कि हमने ये माइक्रोफोन बनाया, हमने ये रेडियो बनाया, हमने ये दुनिया में ये गैजेट्स बनाए, और आप तक हमारा और आपका और मेरा हम सब का जो रिश्ता है ये हम इस्तवार कर सके, और उसकी जो वजह है वो सब की सब रब्बे कायनात का करम है, और रब्बे कायनात के उस अजीम शान और बेबरकत नाम के साथ, उस बाबरकत नाम के साथ आगाज़ चाहता हूँ कि जिसने हम सबको कुव्वत गोयाई अता की है, कुव्वत सुनवाई अता की है, कि जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है।

0: Tapi kan kak,
1: bisa dilihat.

0: मार्च 1952 को कोयटा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कोयटा ही से हासिल की। बचपन से ही उन्होंने लतीफ़ा से गहरी दिलचस्पी रखने वाले आबिद अली ने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान कोयटा से 1969 में किया। 1973 में पीटीवी के ड्रामा जोक सयाल से उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। 1979 ड्रामा वारिस में उनके तारीखी किरदार दिलावर खान ने उन्हें शौहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया।
1: मेरी समझ में तो एक ही है, राधा चौधरी मेरे जीवन के कुत्तों को गोली मार तो पक्षी भी उड़ के पार नहीं जा सकता। फिर वो
0: गहरी आवाज़, मुनफरिद लगो लहजा, फनकारों की मौसर अदायगी, आबिद अली की अदाकारी की नुमायाँ खसूसियात थी। उन्होंने अपने तवील फनी सफर के दौरान 200 से ज़ायद फिल्मों और मुतअद्दिद ड्रामों में अदाकारी की। जश्न, दूसरा आसमां, हजारों रास्ते और समंदर समेत कई ड्रामे उनके फनी सफर का हिस्सा बने। उनकी फनी खदमात के अहतराम में हुकूमत पाकिस्तान ने 1986 में उन्हें सदारती तमगा बरए हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड से नवाजा। 5 सितंबर 2019 को 67 बरस की उम्र में जिगर के आर्जी के बाईस

पाकिस्तान की हिमायत करते हुए भारत।

tiết kiệm. Thank you.

0: they claimed lack of academic demand.
1: And they claimed that UP Fauj hai bhai highly disciplined institution. Matlab dushman se haar jana ek aur cheez hai. Pakistan ne hara diya to ek aur cheez hai. But aapka internal system aapko kuch khushiyan karne mein majboor kar raha hota hai to ye
0: to samajh. Fauj mein अगर उसको मुराल हाई नहीं है तो फौज अनफिट है और वो फौज जिसे भी कमांडर के पास नहीं है वो अनफिट है। इट्स वेरी क्लियर, उनको ये पता है कि हमें ये जाएंगे और हमें मारेंगे ये चीज़ें। उसके बाद जिस तरीके से बिहार के सामने एक बात कही थी कि जो माइनॉरिटीज का जैसे मुसलमान बच्चियों का जो जर्नी जो एक है शाहीन और एक है उन्होंने सिर्फ वजीर आला से बात और उनको पकड़ के लेके पुलिस को पता नहीं मारा उनको उन्होंने सारे छोटे लिखाई को ये इन तक मुझे बताई भी चारिश के लिए जो आरत के होंगे पुलिस के मुझे बोल रहे जुडिशियल मुझे बोल रहे जिनको इसकी वजह से लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। कॉपरेट पार्टी जनता मंदिर पार्टी आम पार्टी कांग्रेस जिसका मतलब मोदी को साबित होते हैं ये इतना गिरा हुआ इंसान ये गुजरात का बिचर जिसको पावर ये अडवानी जो अडवानी की नहीं है वो इसको दे अदरवाइज आप मुझे बता दें कि दुनिया में कभी नहीं होगा फिर अंडरस्टैंडिंग कैसे हम बड़ी बड़ी दुनिया को बढ़ती कौन मोस्टर विक्टोरियन के लिए और जिसको मिलता है गले मिलता है उसको होता है
1: नहीं
0: देखिए
1: नहीं अब तो देखें अब तो वो हाथ आगे करता मिलाने के लिए वो अब तो गले मिलने से बाहर जो है ना वो काफ़ी दूर निकलेंगे। ये बताइए कि अच्छा ये अच्छी बात आपने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना अपनी शायद उसने आपको एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की ये जो मोदी सरकार ने आर एस एस ने ये जो गैंग ऑफ फोर ने काफ़ी काम किया तो फौज के अंदर एक तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी का कल्चर होता है फौज की हिस्सा ही है उसमें उसको दूर नहीं है बट फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फौज के अंदर डिसिप्लिन इतना ज़्यादा होता है ट्रेनिंग सारा साल की कम ज़्यादा होती है कि आप इस चीज़ को कौन मुसलमान है और देखे नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप सारे के सारे फिर भारतीय हैं तो फिर भारतीय फौजी की तरह लड़ रहे हैं। इनकी मूवीज़ भी देखने जो डेकेड्स बनाई गई उसमें बताते थे आपको सिंह भी साथ है खान भी साथ है कपूर भी साथ है तो पीटर भी साथ है तो अब क्या हुआ सर ये जो इनका चेहरा है जी जी
0: तबीयत बात यह है कि वर्ड ये है ये पाकिस्तान में जो सबकी एप रोटी पंजाब रेजिमेंट सिंध रेजिमेंट उसके बाद आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट ऑल दे वेयर सेम यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म पहनती है पाकिस्तान सिंधी रोटी कश्मीरी जो जो है नो बिल बुक ऑल वन दैट जैसे जहाँ पर इनको अगर यूनिफॉर्म पहनते हो अगर आपको तो वो फौज क्या लड़ेगी मुझे पता जिसको ये पता है कमांड करते हैं मेरा वो है हिंदू उसने ना सिख को विकसित कर दी ना मुसलमान को कर दी ना किसी को तो वो आपसे कैसे लड़ेगा आप ये ध्यान से ध्यान जब देते हैं या उनको अपनी इंस्पायरिंग कमांड है और पता होगी इतना प्रोफेशनल कॉम्पिटेटिव हमें सही था हमें मरवाए गए डेट फॉर रेडी वो कमांड वो इनके नाम इसलिए वो अगर रेटिंग ज़्यादा तेजस्वन भी बहुत ज़्यादा और जो हाल और उसके बाद जी माए मुझे जब आपके सामने जब बताते हैं नाम के चलते उनको कुछ कर वो ऊपर ही कह दी माँ अपने बच्चे ने भेजी हमारी क्या एक दो दो बेटे कई बच्चे शहीद होता है बट माँ बाप कहते हैं हमारा बेटा ये जाएगा ये मिसालें तीस सात जनरल दो दो भाई शहीद हैं जिसके फोर्स का

में सबसे बड़ा जो है वो स्टेट ऑफ फॉर्मलेस का मामला है, जो कि ज़्यादा एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है। मिलिट्री एस्केलेशन जिस अंदाज में बढ़ रही है, जिस तरीके से टारगेट्स हिट करने के दावे हो रहे हैं, कैजुअलिटीज हैं, वो दूसरा एक इसका आंसर आपको नज़र आता है। तीसरा डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट है, कोशिशें जो हो रही हैं कैसे आप उनको ईरान की फेवर में या अमरीका की फेवर में लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर रूस पर जो दबाव आया अगर ईरान से पूरी प्यार करे तो दबाव को रशिया ने इफेक्ट किया और वो भी आपको बाकायदा तौर पर अलाइनमेंट उसी तरीके से नज़र आ रही है कि हमारा इतिहादी है ईरान को हमें साथ देना है। और चौथा जो पोलिटिकल प्रेशर इस वक्त आपको यू एस के अंदर था इसराइल में भी है, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शन का मामला है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन का मामला है और बहुत सी चीज़ों पर यू एस के अंदर जो पॉलिसीज हैं प्रेजिडेंट ट्रंप की उनको लेकर काफ़ी इतफाक लगे हैं। जो भी लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं अमरीका की तरफ से, उसमें ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि 6 नेवल अहलकार 3 पायलट समेत 21 अफराद जो है शहीद हुए हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि 60 हमले हमने ईरान की फौज पर किए हैं और 40 और टैंक उसको निकालने का दावा किया उन्होंने स्टेट ऑफ फॉर्मेस से। फिर साथ ही अगर आप देखें तो सदर ईरान पे हमने क्योंकि IRGC को हम हिट कर रहे हैं तो वो बाकायदा तौर पर एक शादी की तकलीफ थी जिस पर वो स्ट्राइक की गई है और उसके हवाले से तो बाकायदा अमेरिका के अंदर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट करने का इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का ऐलान भी किया है। फिर एक और इख्तलाफ आपको नज़र आता है जो पेंटागन की तरफ से खासतौर से ये खबरें आई थी कि अमेरिका की जो फौज तैनात है मशीकोस्ता के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर उसमें तोसी की इतलात सामने आई है कि 2027 तक उनकी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है उसको बरकरार रखा जाएगा, जिसके हवाले से इंतजार करें उसमें भी आपको इख्तलाफात नज़र आते हैं। फिर एक और दावा जो कि अमेरिका के कॉन्टेक्ट जो एक मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से किया गया और वो क्या है जो मेरे खजाना है कि वो क्या दावा करते हैं कि बाकायदा ईरान को प्रेशराइज करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने भी हमारा साथ देने का ऐलान किया है। जो हम एक बाकायदा मौशी शिकंजा तैयार कर रहे हैं उसमें यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ शामिल होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त भी अनसर्टेंटी को मज़ीद परवान चढ़ाती हैं। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जंग जीतने का भी दावा करते हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी आप बयान देखें तो वो भी यही कहते हैं कि अब की बार जो जवाब दिया जाएगा तो उसमें अमेरिका हमारे माजी के मीडियो टाइमेशन को भी मिल जाएगा। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि डॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय अग्रीजन एवरेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। आप डॉक्टर साहब, ये जो चंद एक खबरें आई हमारे सामने, मज़ीद स्ट्राइक हुई, 60 स्ट्राइक्स का अमेरिका ने दावा किया, 44 ऑयल टैंकर कहते हैं कि उन्हें निकाल दिए, खादी के तकनीक में अलाज हो गया, खुद ईरान ने माना कि 21 अफराद भी थे उन्होंने हमारे 3 पायलट शामिल हैं, 6 नेवल एहसास शामिल हैं। अब ये जो नई कहानी दोबारा शुरू हुई है स्ट्राइक्स की एंड रिटेलिएशन, डू यू सी इट एज अ प्रॉपर वॉर, फुल फ्लेज वॉर, या आपको लगता है कि ये लिमिटेड स्ट्राइक्स ही रहेंगी जिस अंदाज में क्लेम किया जा रहा है? इनफैक्ट जो टारगेट्स अचीव करने का क्लेम है वो भी कहीं से साबित नहीं होता।

0: जबकि दो की प्लेयर्स और उनके जो हम नवा वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा चल रहे हैं, और इस उल्टा चलने का क्या फ़ायदा जब आपको 40 सालों से ईरान सैंक्शंस को फेस कर रहा है सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी पे, और उसके बड़ी
1: क्या चेंज हो रहा है
0: डिनाइल जोन के साथ, जिसमें चाइना है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, जिसमें रशिया है, कौन मानेगा इस वक्त? आज ये देख रहा था अब्बास अराकी साहब ने फॉरन मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन के हवाले से एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि जॉर्डन के फॉरन मिनिस्टर कहते हैं कि ईरान को पहले थोड़ा सा सब्र से देखना चाहिए कि कौन सा मुल्क जारियत कर रहा है, क्योंकि न ईरान की जो सोवेरेनिटी है उसका ख्याल करता है, न अरबों की खुदमुख्तियारी का ख्याल करता है, इत्तेहादी भी अब तंग आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अवामी

0: के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपीएम आमने सामने आ गई है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सुपरस्टीम की खासकर कर रही है। दूसरी जानब पंजाब में डेमोक्रेटिक पंजाब और बहावलपुर के बीच बयान की हिमाचल कर रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर जनाब अली कुछूरी सूबा सिंध को बेहतर बनाने और इंतजामी असलाहत की बात कर रहे हैं, जबकि अखबार दिल्ली की बात बयान का मुतालबा कर रहे हैं। क्या नए सूबों का मुतालबा सियासी जरूरत है या इंतजाम की? कितने नए सूबे बनने चाहिए ये सवाल है। सूबे बेहतर निजामी हुकूमत की जमानत हैं या मजबूत जिले सबसे अहम सवाल नए सूबों के मामले पर सियासी जमातों ने काफी राय पर आप शुरू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान में जवाब से माता साहब मौजूद हैं, अपना सिंध में अली कुछूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मूवमेंट साहब का ताल्लुक है, साथ ही साथ कादिर खान मौजूद हैं पाकिस्तान की कुछ तो आई स्टार्ट ऑफ विद अली साहब। अली साहब ये बताइए कि आप ये क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ताना दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉन इशू को जो है वो इशू बना रही है, व्हाई डू यू से दैट?
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और यकीनी तौर पर जो बात मैंने कल जोर पे कही है तो उसको रिपीट करूँगा। और वो बात जो आपने अपने बताई है कि जो पैकेट चलाया है उनमें ये बात है कि एक चीज जो सिंध असेंबली से बारहा पास है, सिंध की जो जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल लिमिट्स है उस पर कोई बात नहीं होगी, तकसीम पर कोई बात नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर मैसेज पहले भी जा चुका है, ये बार बार पाकिस्तान पार्टी जाने से ये बात जो की जाती है वो दरअसल इसलिए की जाती है, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि इनके पास अपने पहले कुछ बचा नहीं है, अपनी कारकर्दगी दिखाने नहीं है, तो सिंध की आवाम को पता नहीं चलता है कि जो डॉक्टर समझते हैं कि बार बार इस तरह के टॉपिक को डिस्कशन में लाया जाता है, बार बार इनके खुद से बच्चों की है कल हमारे कितने बैठ छेड़ी क्यों छेड़ी किस लिए छेड़ी। तो मैंने तो इस इन तमाम तकारीर से पहले जब स्पीकर ऑफिस में मैंने गुजराओं से मुलाकात की तो एक बार के पुकारा इतने सेंसिटिव टॉपिक को आप मत प्रेस करें, मत डिस्कशन में लाएं, बस वो लेकर आए हैं कि उनके पन्ने कुछ बचा नहीं है। जिनकी तकनीक के हवाले से हमारी कॉलेज में बात यह है, हाँ सारी विचार मेरा आने की बात इजाजत देता है कि पाकिस्तान के सूबे बनने चाहिए, गंदी से पाकिस्तान के उसमें सारे सूबे आ जाते हैं और उसका जो मुरंगजा तरीकेकार है आने की हम उसी की बात कर रहे हैं, कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर कहीं सूबे की जरूरत है तो सूबे बना लीजिए जनाब। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि सिंध की ज्योग्राफिकल लिमिट को जो है वो उसको डिवाइड करने की कोशिश को जो है हम नहीं मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात इंतजामी बेहतरी की बात, हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की इंटरप्रिटेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है वो अपने तक करके वो उसको क्या छोटे बाजू के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन बड़ी क्लियर है। मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी ये बात की थी कि देखिए सिंध में 6 इंतजामी यूनिट ऑलरेडी मौजूद हैं, जो सिंध का डिवीजन है, एक कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, इसी तरह लाड़ा सक्कर और ये सारे डिवीजन ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी कि सिंध में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मौजूद हैं। भाई एनएफसी से जब इनको फंड लेना होता है ठाकुर करने के बाद तो एक मुरवजा आई एक निजाम मौजूद है ना, कभी गुजरा आला और वजी आजम को लड़के देखा है आपने कि वो बैठ के फंड के लिए एनएफसी के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हो? वेन इट कम्स टू गिविंग फाइनेंशियल पावर टू द डिवीजन टू प्रदेश में, यहाँ पर वजी आला का एक एहसास आ जाता है भाई कि मैं लाड़काना को कितने फंड दूंगा, मैं कराची को कितने फंड दूंगा, कि क्यों नहीं एन एफ सी के फॉर्मूले को रेप्लिकेट करके पाकिस्तान की कुछ पार्टी स्केल की गई है, क्यों वजीर आला और उसकी कानूनों को शौक है कि सारे फंड जो है वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करें, जमहूर को या सिंध की आवाम को एम्पावर न करें और जमहूर और गवर्नमेंट के दरमियान जो जो वॉइड क्रिएट होता जा रहा है उसको ब्रिज करने की जरूरत है। ये है वो बुनियादी नुकसान जो मुतहदा फौजी मूवमेंट पाकिस्तान की जानब से ये पेश किया गया और इनको बतलाया गया कि आप पूरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन को डिलीट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं है कि लोगों को जो जमहूर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ये वो बुनियादी मुद्दा है।
0: ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसमें भी माजी के साथ आगे जाके एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जाके बात करेंगे। तो मैं जरा मंदू के साथ की तरफ चलूँ। मंदू के साथ बकौले अली साहब के और उनके साथी के आपसे ये बात करनी पड़ेगी, आपके पास जो है वो नज़र उठाना चाहते हैं, लड़ी उठाना चाहते हैं, डाइवर्स करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये शायद आप मदद करेंगे।
1: डॉक्टर पांड्या, पहली बात ये है, आप एमजीएम की बात कर रहे हो, कौनसे एमजीएम जिनके कि आपने खुद ही फरमाया कि मुस्तफा कमाल साहब उनकी बात कर रहे हैं, और फिर ये अगर थर्ड डिवीजन की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 140 के लगभग ज़िले मौजूद हैं, वो ऑलरेडी एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका अपना डी एस पी और फंड और तरक्याती काम और टैक्स कलेक्शन सब चीज़ अपने आप के पास मौजूद है। फिर दूसरी बात ये कि इनका लाइन किया है, क्या ये मुस्तफा कमाल से अलग है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जैसे अली हुसैन साहब बता रहे कि कराची को एक इस्लामी यूनिट के तौर पर डिक्लेयर किया जाए, अब कराची में यहाँ 3-4 बड़े अस्पताल के अलावा 10 में होम में एक रफ आजाद मार्केट को 500 के लगभग अस्पताल कराची में मौजूद है। अब वो एक शख्स दो इस्लामाबाद में दो एरिया में पाकिस्तान के दिल में इसम्बली के 5 मिनट के फासले पे वजीर अजम सदर काबीना सूबी इसम्बली सेनेट इन सब के बावजूद 22,000 रुपये खर्च करने के बावजूद एक डेढ़ अस्पताल उनके संभाला नहीं जा रहे हैं, बच्चों के पीछे ताला लगा के 14 बच्चों को कत्ल किया गया है, एक रिटायर्ड वादे से रिपोर्ट बना के हमने आपको क्लियर कर दी है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आया अगर ये सिस्टम आपका खराब हो गया फिर कौन सा निज़ाम रहेंगे? चलो उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन कानून और आईन में जो दर्ज है आर्टिकल 239 वह ऑलरेडी पंजाब में ये पाकिस्तान अब हो चुका है। फिर भी अली हुसैन साहब और मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी द्वारा वो इतनी आवाम की खिदमत करे या 239 लाए फिर जरूर ही कानून साजी करना चाहे वो पूरा करें। पीपल्स पार्टी ने कभी मुखालफत की बात नहीं किया, फिर जो उन्होंने फरमाया था कि आज 4 करारदाद पहले 5 रखी है, तो जब 5 करारदाद आ गया आपने देश की बड़ास भी निकाल लिए सब भी निकाला, क्या कुछ नहीं बोला आपके एमपीए से? उसके बाद आपकी बायकाट का मतलब क्या? उसके बाद बायकाट के साथ साथ आपने कहा कि ये करारदाद मैं खर्च करता हूँ, करारदाद तो है ही नहीं, वो तो देरी की अच्छा है, एजेंट का मुजम है। वो इन सारी चीज़ों के अलावा जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे इनकी अपनी लाइन क्या है, इनकी पार्टी को क्या तक कौन कर रहा है, क्योंकि अली कोशिशी साहब और बाकी लोगों की अलग अलग लाइन है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कराची पहले से जो है ना ये 40 साल से अली कोशिशी साहब की पार्टी या मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी 40 साल से वो पार्टी हुकूमत देता है। आज भी अली कोशिशी साहब बता दें कि चेकोर हुकूमत पिछले 24 साल से पड़ा हुआ है, इल्तवा का शिकार है, वो पार्टी हुकूमत इस साल भी सिर्फ 10 अरब की है, पिछले साल 3 अरब की है। यहाँ ग्रीन लाइन मनसूबा पिछले 8 साल के इल्तवा का शिकार है, फंड देने की तैयार नहीं है। फिर उसके अलावा जो ना यहाँ पे जो हर टेम के हमने जो सरकारी साहब और मिलावत साहब से रिक्वेस्ट करके वो लाइन मार के निकाली है, उस लाइन के 100 इंजीनियरिंग का 8 तक परमिशन नहीं दे रहे हो पार्टी हुकूमत। फिर मैं ये कहूँगी
0: कलामी की माफी, मैं आपकी ये भी पूछना चाहूँगी, मेरे साथ जो आप बता रहे हैं मुझे बता रहे हैं ठीक है सलामी बता रहे हैं, लेकिन इसमें शायद मैं कह रहा आप ये भी भूल जाते हैं 2008 से 2013 तक वफाकी हुकूमत आपकी थी, अगर ये बात करें वफाक ने नहीं दिया तो आपके पास वफाकी हुकूमत थी, प्लस सिंध को अपना शेयर तो मिलता है, सिंध मुझे भी जो है वो कर सकता है वो निकाल सकता है। मुझे याद है हर साल जो है जिस वक्त आई थिंक सचिन मेहमान साहब जो है वो देख रहे थे ये आपका ट्रांसपोर्ट का, हर दफ़ा आता था कि अब बसेस बस आ गए, अब अगले महीने आ गए, अब पिछले महीने आ गए, ये चीज़ें तो है ना, ये मूव पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है कराची
1: बच्चे आ चुकी है, और 2% कराची जो हमारे पास से 38% है, 2% के तरक्याती काम भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही कर रही है, जो ये सुबह 70% फंड पंजाब को हवा और पाकिस्तान को देता है वो एक मोटरवे से दे नहीं सकता, केपुर को सुबह दे नहीं सकता, ग्रीन लाइन दे नहीं सकता,
0: केपुर में सत्ता बखूब हुआ था, 2008 से 2013 कितनी हुकूमत थी सर?
1: डॉक्टर मारिया आप ये सवाल कर लिए कि मेरे जो कोताही है दिन के अंदर जो कमी है वो मैं मान्य को
0: सर मुझे मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 25 साल हो गए उसको,
1: क्या है
0: सर जी मैं यही पूछ रही हूँ,
2: Okay.

0: ग्रेट उम्र साहबा हमारे साथ इसे मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ द मूवी वो फॉक आपकी तरफ आती है। उम्र साहबा अपनी बात कंप्लीट कीजिए, काफ़ी
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, ये सुबह का स्टेशन है, ये कई दिखाइयों का है, ये आज का तो नहीं है। जो डॉक्टर को चाहती है वो वादे सही तो करती है, उनके मैनिफेस्टो में भी होता है, लेकिन कर नहीं पाती है। वो मामला कुछ इस तरह से भी मेरे ख्याल में है कि हर एक पार्टी की अपनी सूबे में कोई एक पावर बेस होती है और वो नहीं चाहते कि वो पावर बेस कायम हो। तो जो पंजाब में है वो कहता है पूरा पंजाब हमारे अंडर कर हो, जिस में वो कहता है पूरा सिंध हमारे अंडर हो, सोन के पी वाला कहता है सारा के पी हमारे अंडर हो। लेकिन बात सारी ये है कि ये इसके इसके दो आपने कुछ ये पूछा कि आपकी पार्टी क्या मत रखी है, और आपने ये भी कहा कि 2019 में हमने सूबों की हमायत की हमारी लीडरशिप ने, और आज आप लोग तो खामोश हैं। खामोश हम नहीं हैं डॉक्टर मारिया, हम ये समझते हैं कि इसके दो पहलू हैं, एक सियासी पहलू है और एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है। अगर तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सूबे बनाने हैं तो वो तो आप बना सकते हैं, उससे ये होगा कि हर सूबे में जो लोग रहेंगे उनके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे, उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो आवाम है जनरली उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सियासी तौर से सूबे बनाना चाह रहे हैं तो उसमें फिर एक इशू है, और वो आपका आइन कहता है कि सिर्फ मजॉरिटी अगर उसके फेवर में है तो सिर्फ फिर आप ये सूबे बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर
0: मेजोरिटी जो है जो दरकार है वो जाहिर है उसकी फेवर में नहीं है, बिकॉज आई थिंक राइट टू सेट को जिस वक्त आपकी अपनी जो है वो हुकूमत होती है तो नो वन वॉन्ट्स टू कटेयर देयर ओन पावर बैंक। तो आप उस वक्त इसलिए जो है माजी में 2019 में आपको इतनी चीज़ें काबिल कबूल थी, आपने अमेंडमेंट भी सपोर्ट की, इस वक्त कबूल इसलिए नहीं है क्योंकि पावर सेंटर आपका जो है
1: डॉक्टर मारिया
0: है।
1: हम लोग अभी डिलीबरेट कर रहे हैं, हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की कोई क्लियर स्टेटमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन हमने इसके खिलाफ भी बात नहीं की है। राणा सनाउल्लाह ने बार बार कहा है कि हम इसके मुताबिक सोच रहे हैं और इंशाल्लाह जो इसके लिए डिस्कशन और डिबेट चाहिए होगी जाहिर है वो पार्लियामेंट में होगी, और जब पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट होगी तो खुल के होनी चाहिए, और अगर सब चाहते हैं
0: ऐसे एक बात
1: बन जाए।

बिल्कुल मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये अपने सूबे में तो इनको कोई वैक्सीन नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब

0: सितंबर 1965 की जंग का चौथा रोज भारत की ताकत के जरिए कश्मीर हासिल करने की धमकी चीन ने पाकिस्तान की हिमायत करते हुए भारत की कार्रवाईयत की मजम्मत कर दी। पाक पाक को दिफाई इकदाम और पाक बहरिया को समुद्री हदूद में अलर्ट रहने का हुक्म। जोड़िया सेक्टर में सेकंड लेफ्टिनेंट शब्बीर शरीफ की क्यादत में भारतीय मोर्चे पर जबरदस्त हमला। पाक फजाइया ने भारत की जानब से फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान का बंदरगाही निज़ाम जदीद इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के नए दौर में दाखिल। जदीद इस्लाहात से तजारत शफाफियत और ऑपरेशन कारकर्दगी में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बरए पहली इस्लाहात सरगर्मियाँ। बंदरगाही तरक्की के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेशनल पोर्ट मास्टर प्लान तैयार करके काम के अमल कर रहा। पाकिस्तान सिंगल विंडो और फेसलेस कस्टम रिसेप्शन नाफिज किया गया जिससे कार्गो क्लियरेंस का वक्त 53 घंटे से कम होकर 18 घंटे रहे।
1: अस्पताल मजीद अच्छे अस्पताल भी रहते हैं। पूरा एक व्यापार
0: मुकाबला शाम 7:30 बजे बीच की कोर्ट एफडी पर बराहरा। ग्रुप ए में पाकिस्तान

आपको बता दें जो कानून लेकर आए तो आप लोग लोगों को